नमस्कार, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर सन 2026, सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम

दोषी से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि निष्काम कर्म, दया और सात्विक भाव से किए गए कर्म, विशेषकर विद्यादान और अन्नदान, यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो वे ईश्वर प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। और अब झरोखा के अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 319वां। संगीत सरता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 7। कलाकार गायक पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली।

सात बजे भूले बिसर गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर और दोपहर 2 बजे त्रिवेणी आलेख और स्वर मंजरी वर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पर चित्रलोक सुबह 9:30 पर और रात्रि इसी समय पर सुने आज के फनकार जो केंद्रित है अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुने डॉक्टर अजीत मिश्र न्यूरोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सुने सखी सहेली, 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे, अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित, 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर तराने नए पुराने का शेष भाग, 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष पॉप एक्सप्रेस, रात 8 बजे हवा महल में प्रहसन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी, लेखन अजय भारती, निर्देशक मुख्तार अहमद। 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या।

ये थे दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस, लंका कांड का भाग 319वां। आज आप सुनेंगे।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्ध भूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा, उन्होंने अग्निवाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि इन दिनों संगीत सरिता कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत की इन दो शैलियों पर संगीत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। अब तक आप ख्याल के विषय में सुन रहे थे, आज से तराने को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। प्रस्तुत श्रृंखला के अंतर्गत राग मेघ में ख्याल की बंदिश और तराने पर सोदाहरण जानकारी दी है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। कभी कभार क्या होता है कि ख्याल की रचना और उसके भावों का राग से कोई मेलजोल नहीं होता। इस दशा में बंदिश और राग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसलिए गायक व रचनाकार को गहरा अनुभव होना चाहिए। तो सुनिए राग मेघ में मेरी स्वरचित यह बंदिश, जिसमें राग और प्रकृति का तादात्म्य और साम्य है।

वैसे तराना का शौक मुझे शुरू से रहा है। तराना भी गायकी का महत्वपूर्ण अंग है। इस बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। राग मेघ का तराना गालिबन आमिर खान साहब द्वारा कंपोज किया गया है, जिसे मैं आपके सामने एक ताल में गाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

0: राग मेघ में तराने के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप जानते ही हैं कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आपने इसकी सातवीं कड़ी सुनी। सोदाहरण प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज की थी। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगति की और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने साथ दिया। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए ख्याल और तराने की विशेषताएं शीर्षक श्रृंखला का आठवां भाग।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
6: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

महाकाल वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस अमृत वेला में आइए सर्वप्रथम बाबा महाकाल को नमन करते हैं और सुनते हैं शिव भक्ति से सराबोर भजन।

ये था हमारा कार्यक्रम महाकाल वंदन, और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आठ बजकर 30 पर होगा कार्यक्रम उज्जैनी आरजे विद आरजे देशना जैन। 9:30 पर आप सुन सकेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 11 बजे रंग तरंग, दोपहर 12:05 पर होगा यादों की महफिल।

2:30 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली और शाम 4 बजे होगा हेलो फरमाइश।

शाम 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। 6 बजे हमसे जुड़िए भजन संध्या में।

30 मिनट पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल। प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 7:21 पर आप हमसे जुड़िए मालवी गीतारी गूंज में, जिसमें आज होगा मालवी कविता पाठ। कवि है विनोद कुमार चौबे।

रात 9:30 पर होगा उर्दू कार्यक्रम कहंगशा। 10 बजे सुनिएगा 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्स्यूल। 10:20 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

10:30 पर सुनिएगा राग रजनी पर आधारित शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण, हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में कल से बारिश तेज होने की संभावना, 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान और भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति आज शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है और उनके विचारों, राष्ट्रवाद तथा सुशासन के मॉडल को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी प्रतिष्ठान परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि
2: 24 दलों को मिलाकर अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं और एक वोट के कारण से भी क्यों न हो। और जो उनका भाषण था कि मैं शुचिता के लिए अगर गलत रास्ते से सत्ता आती तो मैं उसको चीपिए से भी पकड़ना पसंद नहीं करूंगा, ये हमको बताता है कि वो शुचिता की बात न केवल कहते थे बल्कि जीते थे। सच में राजनीति के लिए शुचिता, विचारों में दृढ़ता, व्यवहार में सौम्यता, ये त्रिमूर्ति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी रहे।
0: इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत कार्रवाई तेज कर दी है।

0: के विश्लेषण के आधार पर फर्जी दस्तावेज आधार और बायोमेट्रिक के दुरुपयोग से जारी सिम की पहचान कर विभिन्न जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्वालियर में 9 मामले दर्ज किए गए जिसका करीब 12 करोड़ 20 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड से संबंध सामने आया है। वहीं इंदौर में 151 संदिग्ध सिम 212 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में पाए गए। वहीं सतना टीकमगढ़ छतरपुर कटनी और झाबुआ में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के मंत्रालय में हुई बैठक में निर्देश दिए कि 1 नवंबर को मनाया जाने वाला मध्य प्रदेश स्थापना दिवस इस वर्ष समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर कृषि विकास और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर मनाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसानों उद्यमियों और युवाओं को सम्मानित किया जाए। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह होगा जबकि जिला मुख्यालयों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय उपलब्धियों और उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुजरात के वडनगर से शुरू हुई सेवा संकल्प यात्रा का इंदौर जिले के बेटमा में स्वागत किया गया जिसमें 35 युवा बाइक सवार शामिल हैं। वहीं शासकीय ललित कला महाविद्यालय धार में जनभागीदारी अध्यक्ष अतुल कालभवर ने चित्रकला कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं नीमच के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय CRPF तथा छिंदवाड़ा के विद्यानिकेतन हाईस्कूल में विद्यार्थियों के लिए भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं झाबुआ जिले के विकासखंड राणापुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा BSW और MSW के छात्रों को अभियान के विभिन्न गतिविधियों के प्रति जागरूक किया गया। भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान शहर के करीब 62,500 प्रतिष्ठानों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। इससे पहले 15 सितंबर को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। 5 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। अब तक 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए हैं। व्यापारिक संगठनों के विरोध के बाद पिछले 22 दिनों से कार्रवाई रुकी हुई है। आज की सुनवाई में नगर निगम और रहवासी पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। प्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकार 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 21 से 70 वर्ष तक की आयु के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे जिसके तहत 4 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अथवा 2 लाख रुपए स्वास्थ्य और 5 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का विकल्प है। अधिमान्य पत्रकारों की नई पॉलिसी 4 अक्टूबर और गैर अधिमान्य पत्रकारों की पॉलिसी 1 नवंबर से ही शुरू होगी। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या उसके बाद वर्दी में रील फोटो वीडियो और ऑडियो क्लिप पोस्ट नहीं कर सकेंगे। सरकारी दस्तावेज जांच से जुड़ी जानकारी और संवेदनशील मामलों की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ ही ऐसी जानकारी को ChatGPT और Gemini AI जैसे टूल्स पर अपलोड करने पर भी रोक रहेगी। पीड़ित आरोपी और गवाहों से जुड़े फोटो वीडियो साझा करने के लिए अनुमति जरूरी होगी। सरकार विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों पर सोशल मीडिया में टिप्पणी तथा निजी प्रचार और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कल से बारिश का दौर तेज होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर रीवा शहडोल और सागर संभागों में रहेगा जबकि भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे जहां वे नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे। पन्ना में जुगल किशोर बाल गणेश समिति द्वारा गणेश प्रतिमा के साथ साथ पंचमुखी हनुमान की अलौकिक प्रतिमा विराजित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा करते हुए तीर्थयात्रियों को समय पर मेघनगर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल देहात पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन विश्वास के तहत तकनीकी मदद से 18 लाख रुपए के 87 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बीमार चल रहे 10 वर्षीय नामीबियाई चीते गौरव की मौत के बाद अब चीतों की संख्या घटकर 55 हो गई है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय बघिर सप्ताह के अवसर पर 23 सितंबर को श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली जाएगी। अलीराजपुर नगर में तेजादशमी के अवसर पर भगवान रामदेव जी का मेला आयोजित कर डोल यात्रा निकाली गई। शिवपुरी में स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वें आयुर्वेद दिवस का जिला स्तरीय आयोजन 23 सितंबर को होगा। डिंडौरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने सागर एवं दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर कटनी मुड़वारा सागर रेलखंड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीमच जिले के नगर परिषद जीरन में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के चौरा स्थित ग्राम पालादौन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 23 सितंबर को विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में कल से बारिश तेज होने की संभावना, 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान और भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:21 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात उज्जैन वासियों, आइए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं प्रभु शिव के नाम के साथ।

श्रोताओ, सुबह का समय अपने साथ नई उम्मीदों, नई ऊर्जा और नई संभावना का संदेश लाता है। जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें धरती को रोशन करती है, वैसे ही हमें भी अपने मन में सकारात्मक विचारों का प्रकाश जगाना चाहिए। बीती हुई बातों की चिंता छोड़कर आज के दिन को मुस्कान, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। हर नई सुबह हमें अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर देती है। तो आइए इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कृतज्ञता के साथ करें, अपने मन को शांत रखें और पूरे उत्साह से दिन की शुरुआत करें।

श्रोताओ, सुप्रभात उज्जैन में। अब वक्त है उज्जैन की कुछ खबरें जानने का समाचार पत्रों से। तपोभूमि से श्वेत वस्त्रों में निकली 16 मंदिरों की दर्शन यात्रा, शांतिनाथ मंदिर में तत्वार्थ सूत्र का विवेचन किया। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के छठे दिन सोमवार को शहर के जैन मंदिरों में उत्तम संयम धर्म और सुगंध दशमी की भव्य आराधना की गई। सेठी नगर स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और महावीर तपोभूमि में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। तपोभूमि से दोपहर में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने श्वेत वस्त्र धारण कर वाहनों के काफिले के साथ शहर के 16 प्रमुख जैन मंदिरों की अभिनव दर्शन यात्रा निकाली। मन्नत की छत्रियां तेजाजी मंदिर चैरिटेबल अस्पताल परिसर में चढ़ाए गए निशान। तेजादशमी पर सोमवार को शहर में लोक देवता तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजन आरती का दौर सुबह से शाम तक जारी रहा। इस अवधि में लोगों ने मन्नती निशान चढ़ाए, मंदिरों में धूप अगरबत्ती नारियल अर्पित किए गए, साथ ही नीम के पत्तों को पानी में भिगोकर श्रद्धालुओं पर छिड़का गया। मान्यता है कि इससे पूरे वर्ष वे रोग मुक्त रहेंगे। कल 12-12 घंटे रहेगी दिन व रात की अवधि। शासकीय जीवाजी वैधशाला में देखा जा सकेगा नजारा। खगोलीय घटनाक्रम के चलते 23 सितंबर को दिन और रात समान अवधि के रहेंगे, यानी अवधि 12-12 घंटे की रहेगी। जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता के अनुसार वैधशाला में इस घटना को शंकु और नाड़ी वल्स यंत्र से देखा जा सकेगा। 23 को शंकु की छाया पूरे दिन सीधी रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी और 23 सितंबर के पूर्व नाड़ी वलय यंत्र के उत्तरी गोल भाग 22 मार्च से 22 सितंबर तक पर धूप रहती है और 23 सितंबर को उत्तरी से दक्षिणी किसी गोल भाग पर धूप नहीं होगी और 24 सितंबर से के अगले दिन 6 माह 20 मार्च तक नाड़ी वलय यंत्र से दक्षिणी गोल भाग पर धूप रहेगी। खेल जगत की बात करें तो शहर के 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया चयन। सागर में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की 70वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीते। इस प्रदर्शन के बाद उज्जैन के 4 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए। इनमें वांधी चौहान, अर्पण काव्य, आदर्श मेवाड़ा सभी शामिल रहे। भोपाल के शिवम और परमी बने स्टेट चैंपियन। उज्जैन के आरव को मिला अंडर 11 का खिताब। जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का लोकमान्य तिलक हाई स्कूल स्थित राजा भाव महाकाल हॉल में समापन हुआ। प्रतियोगिता के सबसे कड़े मुकाबले में भोपाल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। पुरुष एकल वर्ग में भोपाल के शिवम सोलंकी ने खिताब जीता। वहीं महिला एकल में भोपाल की परवी नागदेव विजेता बनी। मेजबान उज्जैन के लिए अंडर 11 बालक में आरव जैन ने पहला स्थान हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। फूल डोल के 105 साल सिंधिया स्टेट से मिला था तामपत्र। 24 पंचान निकालेंगे डोल, 16 झांकियां, 24 अखाड़े, 10 रास मंडल रहेंगे। डोल ग्यारस पर मंगलवार को शहर में बेरवा समाज फूल डोल यात्रा समारोह निकालेगा। इसमें समाज के 25 पंचान डोल निकालेंगे। मुख्य डोल किशनपुरा से रात 8 बजे निकाला जाएगा। 10 घंटे का प्लान। आज शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक 20 मार्ग पर ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। ये थी उज्जैन की कुछ खबरें समाचार पत्रों से। आइए आपको फिर से जोड़ते हैं संगीत में।

त्योहारों की शाम परिवार के बीच हमने कहानियाँ सुनी हैं, ऐसी कहानियाँ जिनमें राजा रानी के किस्से भी थे, देवी देवताओं के प्रसंग भी और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली सीख भी। ये कहानियाँ केवल शब्दों का सिलसिला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की वो धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। भारत की लोक कथाओं में हमारे समाज का अनुभव, रिश्तों की मिठास, प्रकृति के प्रति सम्मान और अच्छे आचरण की सीख छिपी हुई है। तो जाइए यादों के उसी आंगन में लौटते हैं जहाँ कहानी सुनना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक खूबसूरत माध्यम था। आगे की बातें और बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, भारत में व्रत और त्योहारों के साथ कथा सुनाने की परंपरा हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करवा चौथ पर करवा चौथ की कथा, वट सावित्री व्रत पर सावित्री सत्यवान का प्रसंग और हरतालिका तीज पर माता पार्वती व भगवान शिव की कथा सुनाई जाती है। इसी तरह एकादशी व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा और अहोई अष्टमी से जुड़े कथा प्रसंग भी अनेक परिवार में श्रद्धा के साथ सुनाए जाते हैं। इन कथाओं में आस्था के साथ साथ धैर्य, प्रेम, त्याग, कर्तव्य और परिवार के प्रति जिम्मेदारी जैसे जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। यही तो लोक कथाओं की विशेषता है। वे हमें उपदेश देने के बजाय पात्रों और घटनाओं के माध्यम से बहुत कुछ समझा देती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज़ में अगला गीत।

हमारी लोक कथाओं का संसार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, इनमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी और धरती भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता से जुड़े प्रसंग, गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा तथा गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी से जुड़े पौराणिक प्रसंग हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। वहीं पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानी हमें बुद्धि, विवेक और व्यवहार कुशलता की सीख देती है। इन कहानियों को सुनते हुए हम समझ सकते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय, दूसरों के प्रति संवेदना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी आवश्यक है। यही कारण है कि लोक कथाओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले बहुत ही सुंदर गीत की ओर।

समय बदलता है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। मालवा की लोक परंपराएं हो, राजस्थान की वीर गाथाएं हो, या देश के अलग अलग अंचलों में सुनाई जाने वाली दादी नानी की कहानियाँ, हर कथा अपने भीतर किसी क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और जीवन अनुभव को समेटे रहती है। आज ज़रूरत है कि हम इन कथाओं को केवल पुरानी यादों तक सीमित ना रखें, बल्कि बच्चों और नई पीढ़ी के साथ उसे साझा भी करें। कभी घर में बैठकर एक कहानी सुनाएं, कभी किसी बुज़ुर्ग से उनके बचपन की कथाएं पूछें, और कभी स्थानीय लोक कथाओं को सुरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कार केवल किताबों से नहीं, अनुभवों और संवाद से भी मिलते हैं।

मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में

0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में
1: आचार दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं

0: सर फिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
2: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
3: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
2: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे।
2: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
5: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान, लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है। 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honor the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
7: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे यादगार अभिनेता और गायक की जोड़ियों में राजेश खन्ना साहब और किशोर दा का नाम बेहद खास है। राजेश खन्ना साहब के पर्दे पर दिखाई देने वाले भावों को किशोर दा की आवाज़ ने कई गीतों में अलग अलग पहचान दी। आराधना से लेकर कटी पतंग और अमर प्रेम तक इस साझेदारी ने हिंदी सिनेमा संगीत के सुनहरे दौर को समृद्ध किया। किशोर दा की आवाज़ और राजेश खन्ना साहब का अंदाज, दोनों का मेल श्रोताओं के दिल में आज भी बसा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं इनकी यादगार साझेदारी का एक सदाबहार गाना।

संगीत की दुनिया में दो ऐसी आवाजें जिनका नाम लेते ही भारतीय फिल्म संगीत की समृद्ध विरासत याद आ जाती है, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। दोनों बहनों ने अपनी अपनी गायकी से सिनेमा को अनगिनत यादगार गीत दिए। दोनों के सुरों में अपनी अलग पहचान थी और दुनिया को सामने इनका संगीत में योगदान बहुत ही व्यापक रहा। आज की इस महफिल में इन दोनों महान गायिकाओं की साझी विरासत को याद करते हुए सुनते हैं एक लोकप्रिय युगल गीत जिसमें दोनों की आवाज़ों का सुंदर मेल दिखाई देता है।

जब दो सुरीली आवाजें मिलती है तो गीत में एक अलग ही रंग आ जाता है। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार गीत दिए। रफी साहब की मधुर आवाज और आशा जी की बहुमुखी गायकी ने रोमांस, मस्ती, चुलबुलेपन से भरे गीतों को एक खास अंदाज दिया। इनकी आवाजों का मेल पुरानी फिल्मी संगीत के श्रोताओं के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बनता है। ताइए इस शानदार गायकी जोड़ी का एक लोकप्रिय गीत सुनते हैं।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

बॉलीवुड के गीतों में जब शब्दों की गहराई और धुनों की खूबसूरती साथ आती है तो एक यादगार रचना जन्म लेती है। गीतकार गुलजार और संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी कि पंचमदा की साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को नई कई खूबसूरत गीत दिए। गुलजार साहब के संवेदनशील शब्द और पंचमदा की रचनात्मक धुनों का मेल संगीत प्रेमियों को एक अलग ही तरह का अनुभव देता रहा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और अपनी रचनात्मकता की खास छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं इसी जोड़ी का एक मधुर सा गीत।

0: कुछ गीत अपने शब्दों के जरिए सिर्फ प्रेम की बात नहीं करते, बल्कि जिंदगी, समाज और इंसानी भावनाओं को आवाज भी देते हैं। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में ऐसी कई यादगार रचनाएं दी। साहिर लुधियानवी साहब के प्रभावशाली शब्द और एसडी बर्मन साहब की संगीत शैली को मेल कई फिल्मों में सुनाई देता है। इनकी साझेदारी गीतों की भावनात्मकता और साहित्यिक खूबसूरती को सामने लाती है। आइए बढ़ते हैं इस प्यारी सी जोड़ी के अगले गीत की ओर।
1: कैसे

हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में शंकर जय किशन की जोड़ी का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। दोनों संगीतकारों ने मिलकर कई फिल्मों के लिए यादगार धुनें तैयार की और अपने संगीत संयोजन से एक खास पहचान बनाई। राज कपूर साहब की फिल्मों के साथ उनकी साझेदारी ने भी हिंदी सिनेमा के संगीत को कई लोकप्रिय गीत दिए। उनकी रचना में मधुरता, विविधता और भव्य संगीत का मेल देखने को मिलता है। तो चलिए सुनवाते हैं इस प्यारी सी जोड़ी द्वारा कंपोज आपको एक गाना श्री 420 फिल्म से।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों बात उस गायक और संगीतकार की जोड़ी की जिसने हिंदी फिल्म संगीत में ऊर्जा, प्रयोग और मधुरता के कई रंग बिखेरे। किशोर कुमार और आर डी बर्मन साहब की साझेदारी ने अनेक लोकप्रिय गीत को जन्म दिया। किशोरदा की आवाज की विविधता और पंचमदा की रचनात्मक संगीत शैली का मेल श्रोताओं को बहुत पसंद आया। रोमांटिक गीतों से लेकर मस्ती भरे नगमों तक दोनों की साझेदारी ने कई यादगार रचनाएं सुनने को मिली। तो आइए सुनते हैं इनकी जोड़ी का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत।

संगीत की दुनिया में कुछ साझेदारियाँ अपनी मधुरता और भावनात्मक गहराई के लिए हमेशा याद की जाती है। गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार मदन मोहन की जोड़ी हिंदी फिल्म सिनेमा संगीत की बेहद चर्चित जोड़ियों में से एक थी। मदन मोहन साहब की खूबसूरत धुनों को लता जी की आवाज़ ने कई यादगार गीतों का रूप दिया। इनकी साझेदारी में सुरीली अभिव्यक्ति, भावनाओं की गहराई और संगीत की नज़ाकत देखने को मिलती थी। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी जोड़ी का एक मधुर नगमा।

बॉलीवुड की जोड़ियों की बात चल रही हो और इस अगली जोड़ी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब बारी है एक ऐसी फिल्मी जोड़ी की जिसने दोस्ती, प्यार और नोकझोंक को पर्दे पर बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया, शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। इस जोड़ी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है।

और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में दर्शकों का मनोरंजन किया। दोनों की सहज स्क्रीन केमिस्ट्री और अभिनय इसने कई फिल्मी पलों को यादगार बनाया। इनकी जोड़ी से जुड़े गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं इस लोकप्रिय जोड़ी का एक खूबसूरत सा गीत।

और अब हमारी आज की फिल्मी महफिल में बात उस जोड़ी की जिसने अपनी अदाकारी, डांस और शानदार स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी। इस जोड़ी ने तेजाब, राम लखन और बेटा जैसी कई फिल्मों में अलग अलग किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई। दोनों की ऊर्जा और अभिनय ने पर्दे पर कई यादगार पल रचे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर में सुनते हैं अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत।

0: चली पाम पाम पाम
1: हनुमाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
4: तो दोस्तों, आज की हमारी फिल्मी महफिल में हमने याद की बॉलीवुड की शानदार जोड़ियां। कभी अभिनेता और गायक की साझेदारी, कभी दो सुरीली आवाजों का मेल, तो कभी शब्दों और धुनों की खूबसूरत दोस्ती। इन जोड़ियों ने सिनेमा और संगीत को कई ऐसे गीत दिए जो समय के साथ भी श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उम्मीद है इन यादों और नगमों का सफ़र आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे देशना जैन। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन का FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

श्रोताओं, संगीत जब दिल की गहराइयों से जुड़ता है तो हर धुन एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। प्यार, विश्वास और किसी अपने की मौजूदगी इन भावनाओं को सुरों में पिरोकर अपना अलग ही गीत बनाती है। इसकी मधुर धुन और सुरीली आवाज़ आपको भावनाओं की एक प्यारी दुनिया में ले जाएगी। तो कुछ पल अपने कामकाज को थोड़ा रोक कर इस संगीत की दुनिया में खो जाइए। सुनवाते हैं आपको जुबिन नौटियाल की आवाज़ में एक सुंदर सा गीत।

रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि एक दूसरे की अहमियत समझने में भी होती है। कभी किसी की मौजूदगी मन को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी का ख्याल भी बेचैन कर देता है। अगला गीत प्यार और अपनापन लिए हुए इसी भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है। इसकी धुन में मिठास और गायकी में भावनाओं की गहराई महसूस होती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, संगीत को महसूस कीजिए और सुनिए खेल खेल में फिल्म से ये अगला गीत।

कहते हैं जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से हर दिन खास लगने लगता है। उनका साथ छोटी छोटी खुशियों को और भी खूबसूरत बना देता है। अगला गीत भी किसी अपने के महत्व और प्यार की भावनाओं को सुरों में सजाता है। इसकी मधुर धुन और भावपूर्ण आवाज़ आपके दिल को छू जाएगी। सुनिए ये अगला गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कई भावनाएं बिना कहे भी समझ आ जाती है। किसी की याद, किसी की मुस्कान और दिल में छुपी अनकही बातें, सब अपने आप एक कहानी कहने लगती है। अगली प्रस्तुति में आपको ऐसे ही प्यार एहसास की झलक मिलेगी। गीत की धुन में मिठास है और आवाज़ में एक अलग ही अपनापन। सुनिए ये अगला प्यारा सा गीत।

जिंदगी में मिलने वाले कुछ रिश्ते और कुछ खूबसूरत पल हमेशा याद रहते हैं। कभी लगता है जैसे किसी खास इंसान का हमारी जिंदगी में आना किस्मत का खूबसूरत तोहफा है। अगला गीत भी प्यार, उम्मीद और भाग्य से जुड़े ऐसे ही एहसास को अपनी धुन में समेटे हुए है। इसकी मधुर गायकी मन को सुकून देगी और बोल दिल में एक प्यारी सी भावना जगाएंगे। तो संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में शामिल हो जाइए और सुनिए ये अगली प्रस्तुति सत्य प्रेम की कथा फिल्म से पायल देव और विशाल मिश्रा की आवाज में।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: प्यार हमारी जिंदगी में खुशियों के कई रंग भर देता है। किसी का साथ, उसकी परवाह और छोटी छोटी बातों में छुपा अपनापन, ये सभी रिश्तों को खास बनाते हैं। अगला गीत प्रेम की इसी खूबसूरत भावना को अपने सुरों और संगीत के माध्यम से सामने रखता है। इसकी धुन में मिठास है और शब्दों में दिल से जुड़ने वाला एहसास। तो अपने मन को संगीत के हवाले कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: श्रोताओ, इसी के साथ ये था हमारा बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, अगर आप हमें आपके नामों के साथ अपनी फरमाइशें भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 456010, यानी कि 456010। और आज की पहले फरमाइश करता है महाराजा रेडियो श्रोता संघ, जिला खंडवा, ग्राम लाहौरी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, साथ ही खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत है आनंद मिलिंद का और बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

फरमाइश पर सुनाते हैं आपको किशोर कुमार की आवाज़ में गीत याराना फिल्म से, जिसे संगीत दिया है राजेश रोशन ने और गीतकार है अनजान। फरमाइश करता है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। साथ ही आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां।

हमारे अगले फरमाइश करता है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मिका बीरक, इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं गाइड फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत है एस डी बर्मन साहब का और बोल है शैलेंद्र के।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म से। अपनी आवाज़ इसमें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल है मजरू सुल्तानपुरी के। फरमाइश करता है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, साथ ही कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज।

सुरेश वाडकर की आवाज़ में सदमा फिल्म से अगला गीत फरमाइश करता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, साथी दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

सुनवाते हैं आपको अगला गीत, जिसमें संगीत है आरडी बर्मन का, बोल है आनंद बख्शी के, इसे गाया है किशोर कुमार ने। ये गीत है फिल्म कटी पतंग से। फरमाइश करता है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले।

अब बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, तीसरी मंजिल फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल है मजरूर सुल्तानपुरी के। फरमाइश करता है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनामिका और तन्मय, साथ ही दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी।

हमारे अगले फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, साथ ही छत्तीसगढ़ के ददरेंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वासनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं ईमानदार फिल्म से गाना, जिसे गाया है सुरेश वडकर ने। संगीत है बप्पी लहरी का और बोल है अनजान के।

अगली फरमाइश करता है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललित नारायण खर्चे, साथ ही पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं मोहब्बत फिल्म से गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म साजन से, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फरमाइश करता है कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से, नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई डोंगर दीवे, रीमाताई डोंगर दीवे, दीक्षाताई डोंगर दीवे और राहुल डोंगर दीवे।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगर आप भी हमें आपके नाम के साथ अपनी फरमाइशें भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 456010, यानी कि 456010।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। थोड़ी ही देर में 11 बजने को है और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने, गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना, आवाज़ अलीशा चिनॉय की, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अगली आवाज चंदन दास की है। इनकी गजल आप सुनिए, शायर मुराद लखनवी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना दिल पड़ोसी है, इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना तिकोन का चौथा कोण। छाया गांगुली की आवाज, गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेकहोल्डर्स टू डिलीबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था

0: तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4 प्लस भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, फिल्म अमीर गरीब,

0: विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था कर्ज।

दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए, देश की सुरीली धड़कन भारत का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल, फिल्म का नाम डिस्को डांसर। अनजान के बोल बप्पी लहरी की तरह, पर्वती खान की आवाज।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में

0: वाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने। अच्छा ऐसा? हां ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हां चलो हो जाए। अब लड़का कहता है हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा आया ना इस खेल में। ऑफ कोर्स तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे। तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीले नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे, और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी।

भाई कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 79 में तुम्हें भाई कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 79 में तुम्हें

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे। भाई ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं। तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोताएं जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यादें। देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है, सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैशलाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए 5 मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास 2-2 रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है। और वो फिल्म जो है 1 महीने बाद देखने को मिली थी, बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं, और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है।

जो लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें एआई के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहाँ से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुघड़ता, वो जीवन का सुकून कहाँ से लाएंगे, जब संगीत में शोर कम और सुकून ज्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं हैं, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं? ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान का गा रहे हैं?

क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला, ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे, आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊ जी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीजें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था, 80 का दशक अब कहां। विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज ही सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं, वो लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो

देखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं। 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल खत्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

और शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां विविध भारती परिवार की ओर से।

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहां विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर ये गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहाँ होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी। ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें हैं। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गाना अनिता फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे अनिता फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी, मनोहर उदास और हेमलता तीन अलग अलग आवाज़ों में इस गाने के वर्जन हैं। संगीतकार उषा खन्ना हैं ये भी। और इसके अलावा राज बब्बर पर फिल्म आया गया, दीपक पराशर और रंजीता ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियाँ इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहाँ पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज्यादा सुना है, इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था और सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लुड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, ना मोबाइल ना वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं, दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना आ सको। क्या मुकाबला था शक्ति, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं, यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना भी खत्म हुआ। कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह, इंकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अंग्रेजी में चल सकता हूं, अंग्रेजी में हंस सकता हूं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमक हलाल, लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोक कर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देख कर लौट रहे थे। उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी। कितना इंतजार था लोगों को। कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर, कौन थे इस फिल्म के संगीतकार ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी

0: क्या बेमिसाल गाना, और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहां खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम को खत्म तो करना ही होता है ना अपने नियत समय पर। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, 80 के दशक की सैर पर ले गए। जो यादें हैं उन्हें जिंदा रखिएगा, बांटते रहिएगा।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:00 PM हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये गाना था फिल्म श्री 420 का। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों के। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक और गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म जुल्म की, जुल्म का बदला से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश के गाने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें सुख और मंगल का संदेश दिया गया। यह श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63वें सूत्र का मंत्र है, जो अथर्ववेद और शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है। मंत्र में मानव जीवन की तुलना समुद्र यात्रा से करते हुए एक सुरक्षित और कल्याणकारी नौका की कामना की गई है। इसमें सत्य, धर्म और सदाचार को जीवन की नौका के पतवार के रूप में बताया गया है, जो मनुष्य को पाप रहित और शुभ मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे, जिसमें वे ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेंगलुरु प्रवास के दौरान क्वालकॉम के R&D सेंटर के साथ सिग्नल चिप और इनोवेशन और सिंगल ट्रॉन सिस्टम का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की क्षेत्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ये कार्यशाला नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद विषय पर आधारित थी। इसमें देश भर से 50 से अधिक विद्युत वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में सौर ऊर्जा और बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के जरिए उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने और खरीद लागत नियंत्रित करने पर चर्चा हुई। भोपाल में 25 सितंबर को भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और PM ई बस सेवा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 300 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और बसों की फिटनेस तथा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन गणेश विसर्जन भी होने के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। भोपाल में आज से 5 दिवसीय भोपाल विज्ञान मेला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। मेले की खास पहल नवाचार संगम में विद्यार्थियों की 100 से अधिक परियोजनाएं प्रदर्शित होंगी, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान दिखाए जाएंगे। मेले के महाप्रदर्शन में इसरो, IIT और CSIR सहित 53 वैज्ञानिक संस्थाएं हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टीम ने आज फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया। भारत ने इससे पहले 2022 के एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए, जो एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में श्रीलंकाई टीम 15.5 ओवर में 69 रन पर ऑल आउट हो गई। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 सितंबर को सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा। 2 दिन में 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में असर सबसे ज्यादा रहेगा। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने इसकी वजह निम्न दाब क्षेत्र को बताया है। आपको समाचार संक्षेप में। भगवान श्री कृष्ण के जलवा उत्सव का पर्व डोल 11 आज आगरमालवा जिले में भी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कल जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की समीक्षा की। सिंगरौली कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत दिवरा ग्राम पंचायत क्लस्टर में आयोजित होने वाले विशेष शिविर की तैयारियां समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। अपराधों की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच को मजबूत करने के लिए झाबुआ पुलिस को पुलिस मुख्यालय की ओर से अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
2: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ

0: जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
4: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
3: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
5: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा इस फिल्म अवार्ड के

0: बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे, हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
2: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
2: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
5: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली।

0: इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं साहिल लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार राहुल देवबर्मन। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं बता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा?
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर लिया, राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फहरिस्त। और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल।
2: और

0: जा रही है और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर जब
1: फिक्र
0: हम
1: में लगे रहते हैं एक दूसरे की,
0: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है। इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। तो हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोजबीन नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत सारे रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
0: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सुना लीजिए, उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: जी, साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत कहो ना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं। और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ, मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
0: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा, तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या? वो सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा भी रहे होंगे,
0: शायद लिखेंगे।
1: हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं,
0: उन्हें अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत की प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से MBA किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिनों।
1: ममता जी मैंने पढ़ा है, सुना है, और आपके बारे में भी पढ़ा है, और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियां बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है, पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही हैं ममता जी।
0: बिल्कुल, भले ही महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं को मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है, लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है, हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है, हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें, हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इससे इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुने और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए, वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती है तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है, मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं।
0: और आप

0: निडर बनते हैं इसी बहाने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही है तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है, सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है, बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए। और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं, ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए। क्योंकि अब आगे समय आपका आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहां आप आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहां नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा है ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहाँ तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, ये मेरा अपना विचार।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथी कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है
1: जी,
0: तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है, इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूँ वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है, कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भाग दौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है,
1: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर फिलहाल
1: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका सफर उनके लिए सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और हमारा उसे उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाए, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दे। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे कहा, आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें हैं, कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़ी थी और एक हम उम्र लड़का आकर बोला, आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं, हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कह के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है, हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है, जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं, इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं, एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने कहा मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने 2 ही शब्द सीखे अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया, 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है, आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई काफी उम्र का हो चुका है, मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है, हाँ मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं, फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंसकर मुस्कुराकर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
0: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल है, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
1: वही दीदी तो ताई भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता।
0: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार

0: बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
1: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा

0: पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
1: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है, कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं,
1: अंकल कहाँ दिख रहा है।
0: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं,
1: तो
0: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई, अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दे।

0: अब ये आंटी न कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बैंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया, तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
1: चाची
0: मतलब बड़ी माँ, एक तरह से मतलब जो चाची है,
1: माँ की जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है? तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में दो गुना तीन गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था, और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है, इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए, इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोचा है तो उसी के आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर

0: आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ, तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे सरकार, जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने,
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओं, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है, और अब भी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
2: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
2: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में, बीचों बीच में हूं इस वक्त, और

0: मंजिल बहुत दूर है, थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूँ जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है? हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप, मैं संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मगर बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेस का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेस नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेस हैं और गुजराती प्लेस जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेस से ही अडेप्टेशन है, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेस हैं, जो इंग्लिश प्लेस यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेस ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और NCPA है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहां आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में। और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया, और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं आते
1: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है।

0: ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे निभाएंगे? कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी ने, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा? तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने आनंद जी। आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा,
0: जी
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
1: जी
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गई हैं कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है,
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: आपकी दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की है। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा, या आपको लगा रहे मैं कहां फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ अगर मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं, हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब मुंबई में है हम।
0: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
1: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्युलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
1: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो। तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ भी नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे विमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
0: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
1: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
0: जी,
1: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाई थी सीरियल, और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया, और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
0: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
1: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
0: वाह।

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है। वो आदमी शायद, उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे। वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
0: ये
1: ऐसा
0: तो
1: मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सिर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
0: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई, जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परसेंगे परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस का, ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा

0: आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है। आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार जब थिएटर के बाद फिल्में आई, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं।

और मैं जिस तरह के जो पेपर्स न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, इसके बारे में आप बात

0: नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
0: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
1: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
0: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
1: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, इसमें कितनी गलतियां आपको मिलेगी वो सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से। और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक

0: ठाक है।
1: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं हैं, आप क्या करते हैं?
0: संगीत में
1: रुचि है?
0: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फार्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
1: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
0: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मज़ा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूँगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो बहुत ही यादगार रहे।
1: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
0: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉयड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉयड के

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
4: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
4: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
4: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
4: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
4: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: नमस्कार, FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब आपके लिए पेश है युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के लोकप्रिय युवा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त प्रतिभा।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी कौमुदी। दोस्तों, उम्मीद है आप जहां भी हैं, जिस भी काम में व्यस्त हैं, वहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तैयार हैं आज के इस खूबसूरत, जानकारी से भरपूर और मनोरंजन से सजे हुए सफर के लिए।
0: कौमुदी, युववाणी की खासियत ही यही है कि हर कार्यक्रम में आपको कुछ नया जानने और कुछ नया सोचने को मिलता है। कभी हम बात करते हैं अपनी संस्कृति और परंपराओं की, कभी बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी की, तो कभी करियर और रोजगार से जुड़ी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल। और आज का कार्यक्रम

0: कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही है। आज हम बात करेंगे परंपराओं की, प्रकृति की, टेक्नोलॉजी की और रोजगार के कई नए अवसरों की।
1: तो शुरुआत करेंगे चतुर्मास से, जानेंगे कि चतुर्मास क्या है, भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है और इस दौरान आने वाले प्रमुख पर्व हमारी परंपराओं से किस तरह जुड़े हुए हैं।
0: और चतुर्मास की इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उन पर्वों की जो मनाए जा चुके हैं, उनकी जो इस दौरान चल रहे हैं और उनकी जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: इसके बाद हमारा रुख होगा प्रकृति और वन्य जीवों की ओर। आज यानी 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, तो जानेंगे राइनोज के संरक्षण की जरूरत और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम खासकर युवा अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं।
0: इसके बाद बात होगी आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। लेकिन सिर्फ AI क्या है इतना ही नहीं, हम जानेंगे कि AI के क्षेत्र में युवाओं के लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किन स्किल्स के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
1: और जब बात करियर और अपॉर्चुनिटीज़ की हो ही रही है, तो हमारे कार्यक्रम का ज़रूरी हिस्सा रोज़गार समाचार भी आपके साथ रहेगा, जहाँ मिलेगी रोज़गार, भर्ती और परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियाँ।
0: यानी आज का युवाणी लेकर आया है एक ऐसा सफर जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगा, प्रकृति के प्रति जागरूक करेगा और भविष्य के लिए तैयार भी।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की हर बातचीत में आपके लिए कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ काम का जरूर होगा।
0: तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं संगीत के साथ और सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज़ और संगीत में ये गीत और बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के।
1: अब वक्त है आज के पहले खास विषय की ओर बढ़ने का। अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े एक ऐसे समय की जिसमें कई महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं।
0: हाँ प्रतिभा, और वो है चतुर्मास। दोस्तों, नाम से ही समझ आता है, चतुर यानी चार और मास यानी महीना, यानी चार महीनों की ये विशेष अवधि जिसे भारतीय परंपरा में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: अगर आसान भाषा में समझें कौमुदी, तो चतुर्मास वर्षा ऋतु के आसपास आने वाले वह अवधि है जिसमें पूजा पाठ, व्रत साधना और कई पर्वों की विशेष भूमिका होती है।
0: पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत आमतौर पर देवशयनी एकादशी से और समापन देव उठनी एकादशी के आसपास माना जाता है। दोस्तों, इस दौरान भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और फिर जागने की धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है।
1: यानी चतुर्मास सिर्फ चार महीनों की अवधि नहीं बल्कि आस्था, संयम, साधना और उत्सवों से जुड़ी एक सांस्कृतिक यात्रा है।
0: इस दौरान सबसे पहले आता है देवशयनी एकादशी, जिसे चतुर्मास के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा, जो गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है।
1: फिर आता है श्रावण यानी सावन, जो भगवान शिव की भक्ति, बारिश और हरियाली के लिए जाना जाता है। इसी दौरान नागपंचमी और फिर रक्षाबंधन जैसे पर्व भी आते हैं।
0: इसके बाद जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव, जहाँ कहीं झांकियाँ, कहीं भजन कीर्तन और कहीं दही हांडी जैसे आयोजन देखने को मिलते हैं।
1: और फिर आता है गणेश चतुर्थी, जो कई दिनों तक चलने वाले उत्सव के रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसके अलावा हरतालिका तीज और ओणम जैसे क्षेत्रीय पर्व भी इस अवधि में अपनी खास परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं।
0: यानी चतुर्मास हमें भारत की उस खूबसूरत तस्वीर से रूबरू कराता है जहाँ अलग अलग राज्यों की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन त्यौहार सभी को जोड़ते हैं।
1: और आज की युवा पीढ़ी भी इन त्योहारों से अपने तरीके से जुड़ रही है। सोशल मीडिया पर फेस्टिव पोस्ट, रील्स और क्रिएटिव सेलिब्रेशंस इसका एक खासी उदाहरण है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, साथ ही युवा स्थानीय परंपराओं को सोशल मीडिया के जरिए दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और अपनी कल्चरल हेरिटेज को नई पीढ़ी से जोड़ रहे हैं।
1: कौमुदी, क्योंकि त्यौहार सिर्फ सेलिब्रेशन तो नहीं है बल्कि हमारी कहानियाँ, रिश्ते, परंपराओं और मूल्यों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने का एक माध्यम भी है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चतुर्मास क्या है और इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्व आते हैं, लेकिन इन पर्वों के पीछे कई रोचक कहानियाँ, मान्यताएं और परंपराएं भी छिपी हैं जो हम हमारी आगे की बातचीत में जानेंगे।
1: फिलहाल चतुर्मास की इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा सा संगीत विराम देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म अग्निपथ से अजय गोगावली की आवाज में ये गीत। संगीत था अजय अतुल का और बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के।
5: अब एक बार फिर लौटते हैं अपनी बातचीत की ओर। अभी तक हमने जाना कि चतुर्मास क्या है और भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है।
4: बिल्कुल प्रतिभा, और अब हम चतुर्मास की इसी यात्रा को आज यानी 22 सितंबर के संदर्भ में समझेंगे। कुछ पर्व इस दौरान मनाए जा चुके हैं। गणेश उत्सव की रौनक अभी भी हमारे बीच है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
5: तो सबसे पहले एक छोटी सी नज़र उन पर्वों पर जो चतुर्मास की इस यात्रा में आ चुके हैं और अपने पीछे हमारी संस्कृति की इस खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं।
4: चतुर्मास की शुरुआत से जुड़े देवशयनी एकादशी को महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी समय भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की बात कही गई है और यहीं से चतुर्मास की शुरुआत भी मानी जाती है।
5: इसके बाद आया गुरु पूर्णिमा। अपने गुरु शिक्षक और मार्गदर्शक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व।
4: फिर आया श्रावण यानी सावन का महीना जो भगवान शिव की आराधना, सोमवार के व्रत, कांवड़ यात्रा और हरियाली के लिए जाना जाता है।
5: सावन के दौरान नागपंचमी और फिर रक्षाबंधन जैसे पर्व भी आए। नागपंचमी में नाग देवता के प्रति आस्था और प्रकृति से जुड़ाव देखने को मिलता है, जबकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास की खूबसूरत मिसाल है।
4: इसके बाद आई जन्माष्टमी जहां देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। कहीं झांकियां सजी, कहीं भजन कीर्तन हुए और कहीं दही हांडी जैसे आयोजन हुए।
5: यानी चतुर्मास की अब तक की यात्रा में हमें भक्ति, रिश्तों, प्रकृति और संस्कृति हर रंग देखने को मिला।
4: बिल्कुल। और प्रतिभा, अब आते हैं ऐसे पर्व पर जिसकी रौनक इस समय हमारे आसपास साफ दिखाई दे रही है, गणेश उत्सव।
5: गणपति बप्पा की स्थापना, आरती, भजन, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है।
4: लेकिन दोस्तों, आज के समय में गणेश उत्सव के साथ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी।
5: बिल्कुल कौमुदी, मिट्टी की प्रतिमाएं हो, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो, इको फ्रेंडली सजावट और सुरक्षित विसर्जन जैसे छोटे छोटे कदम हमारी आस्था के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करते हैं।
4: और यहाँ युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अवेयरनेस फैलाने से लेकर अपने घर, कॉलोनी और कम्युनिटी में सस्टेनेबल सेलिब्रेशन को बढ़ावा देने तक प्रतिभा युवा आज अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकता है।
5: तो गणपति बप्पा के इस उत्सव में भक्ति और उत्साह के साथ प्रकृति का ध्यान रखने का संदेश भी हमारे साथ ही है।
4: बिल्कुल। और अब गणेश उत्सव की इसी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है अनंत चतुर्दशी। कई स्थानों पर इसी दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और कई दिनों से चल रहे उत्सव को विदाई दी जाती है।
5: गणपति बप्पा को विदाई देने का यह क्षण थोड़ा भावुक भी होता है और उत्सव से भरा भी, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। विसर्जन के दौरान हमारे जल स्रोत स्वच्छ रहें और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।
4: यानी हमारी आस्था और प्रकृति दोनों का सम्मान साथ साथ हो, यही आज के समय की आवश्यकता है।
5: और गणेश उत्सव के बाद फेस्टिव कैलेंडर हमें लेकर आएगा शारदीय नवरात्रि की ओर।
4: 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि पर्व शक्ति की आराधना से जुड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग परंपराओं और रंगों के साथ मनाया जाता है।
5: कहीं गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिलेगी, कहीं दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन होंगे और कहीं घरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा और व्रत रखे जाएंगे।
4: यानी दोस्तों, एक ही पर्व और उसे मनाने के इतने अलग अलग तरीके, यही तो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी की खूबसूरती है।
5: और नवरात्रि के बाद आएगा विजयादशमी यानी दशहरा, जिसे अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
4: रामलीला, रावण दहन और अलग अलग क्षेत्रों की अपनी परंपराएं इस पर्व को खास बनाती हैं।
5: लेकिन दशहरे के संदेश को हम अपने व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़ सकते हैं। श्रोताओं, क्यों ना इस बार अपने अंदर की किसी एक ऐसी आदत को छोड़ने का संकल्प लिया जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है।
4: बिल्कुल, चाहे वो आलस हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, या एक ऐसी आदत जो हम लंबे समय से बदलना चाहते हैं, विजयादशमी एक सकारात्मक शुरुआत का अवसर भी बन सकती है।
5: हर पर्व का अपना रंग है, अपनी परंपरा है और अपने संदेश हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ती है एक चीज़, हमारी संस्कृति और लोगों को एक साथ जोड़ने की भावना।
4: तो इस त्यौहार के पर्व में खूब उत्सव मनाइए, खुशियां बांटिए, लेकिन साथ ही अपनी परंपराओं को समझिए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी याद रखिए,
5: क्योंकि हमारी संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी जब हम उसे सिर्फ मनाएंगे नहीं बल्कि समझेंगे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे।
4: दोस्तों, हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल अभी सुनते हैं हमारा आज का अगला गीत।

0: अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी थी कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर ने। गीतकार थे महबूब और संगीत दिया था स्माइल दरबार ने। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे चतुर्मास पर्व की, जहां संयम, साधना और जीवों के प्रति करुणा जैसे विचारों को महत्व दिया जाता है। और अगर करुणा की बात हो तो क्या यह केवल इंसानों तक सीमित होनी चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास मौजूद हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, प्रकृति के संतुलन में अपनी एक भूमिका निभाता है। और आज का दिन भी हमें कुछ ऐसे ही जीवों के संरक्षण की याद दिलाता है।
0: जी हाँ, आज 22 सितंबर है वर्ल्ड राइनो डे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राइनो के लिए एक अलग दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इनके संरक्षण पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है?
1: तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं और समझते हैं कि राइनो से जुड़ी ये पहल हमारे पूरे वन्य जीव संरक्षण के बारे में क्या सिखाती है। और सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड राइनो डे की शुरुआत क्यों हुई। राइनो दुनिया के उन वन्य जीवों में शामिल हैं जिन्हें अवैध शिकार और अपने प्राकृतिक आवास के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है,
0: और इसी वजह से राइनो के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। वर्ल्ड राइनो डे का उद्देश्य लोगों को राइनोस की विभिन्न प्रजातियों, उनके सामने आने वाले खतरों और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना है।
1: दोस्तों, यहाँ एक बात जानना काफी दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में राइनो की 5 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: जी हाँ, इनमें भारतीय राइनो, जिसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स भी कहा जाता है, एक प्रमुख प्रजाति है। भारत में यह मुख्य रूप से असम के काजीरंगा जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।
1: वैसे प्रतिभा, अब सवाल ये है कि राइनो को बचाने से हमें क्या फायदा होता है? क्या ये सिर्फ एक जानवर की प्रजाति को बचाने की बात है?
0: नहीं कौमुदी, यह उससे कहीं ज्यादा है। राइनो अपने प्राकृतिक आवास में घास खाने वाले बड़े शाकाहारी जीव हैं। वे वनस्पतियां और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उनके संरक्षण पे पूरे इकोसिस्टम की एक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इनके सामने मौजूद खतरों में अवैध शिकार, खासकर सींग के लिए होने वाला शिकार और प्राकृतिक आवास का नुकसान शामिल है। लेकिन यहीं से हम सभी के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है। अगर हम जंगलों से दूर शहरों में रहते हैं तो वन्यजीव संरक्षण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
0: बहुत ज़रूरी सवाल है कौमुदी। हम वन्य जीवों से जुड़े सही तथ्यों को जान सकते हैं, गलत जानकारी फैलाने से बच सकते हैं, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं।
1: और दोस्तों, आज वर्ल्ड राइनो डे पर एक बात याद रखिए, वन्य जीव संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, प्रकृति के प्रति हमारी जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार भी इसमें योगदान दे सकता है। और अब इसी सोच के साथ समय है खूबसूरत गीत का। हम फिर लौटेंगे कुछ और जरूरी बातों के साथ।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: अभी ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म क्रूक से निखिल डिसूजा की आवाज़ में ये गीत, बोल थे कुमार के और संगीत दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने।
3: प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है ना कौमुदी, और इसी तरह हमारी बदलती दुनिया में हर नई खोज और तकनीक हमारे जीवन को एक नया रूप दे रही है।
2: बिल्कुल प्रतिभा, और आज की सबसे चर्चित तकनीकों में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। लेकिन ये सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि करियर की दुनिया में भी कई नए रास्ते खोल रही है।
3: तो सवाल ये है कि AI के इस बढ़ते दौर में युवा अपने लिए कौन से करियर ऑप्शंस तलाश सकते हैं और इसकी शुरुआत करने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत होगी।
2: चलिए दोस्तों, अब इसी विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि करियर इन AI के बारे में कुछ आसान और प्रैक्टिकल जानकारी के साथ। और शुरुआत करते हैं श्रोताओं आपके लिए एक छोटे से सवाल से। जब हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ ChatGPT जैसे टूल्स तक सीमित है?
3: बिल्कुल नहीं कौमुदी, AI ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को कुछ ऐसे काम करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, जैसे सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज को समझना।
2: और यही वजह है कि आज AI का इस्तेमाल हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, मार्केटिंग और बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। यानी AI की जानकारी सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के युवाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है।
3: बिल्कुल सही कहा। लेकिन कौमुदी, अब सवाल आता है कि अगर कोई युवा AI में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे किन रास्तों के बारे में जानना चाहिए?
2: तो चलो प्रतिभा, क्यों ना बात करें AI से जुड़े कुछ करियर ऑप्शंस की और समझते हैं कि इनमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कौन सी दूसरी स्किल्स भी काम आ सकती है।
3: जी दोस्तों, अब जब हमें ये समझ आ ही गया है कि AI का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है तो जाहिर है कि इसमें जुड़े करियर ऑप्शंस भी काफ़ी होंगे। लेकिन क्या AI में करियर का मतलब सिर्फ कोडिंग करना या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। AI की दुनिया काफ़ी विस्तृत है। इसमें AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे टेक्निकल रोल्स हैं, तो वहीं AI प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और AI मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जैसे रोल्स भी सामने आ रहे हैं।
3: यानी अगर किसी की रुचि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट या क्रिएटिविटी में है तो उसके लिए भी AI से जुड़े अवसर हो सकते हैं।
2: बिल्कुल प्रतिभा, और उदाहरण के लिए एक BBA स्टूडेंट अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ डेटा एनालिसिस और AI टूल्स की जानकारी विकसित करता है तो वह ऐसे रोल्स की तैयारी कर सकता है जहाँ बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल होता है।
3: तो युवाओं, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, AI में करियर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी रुचि और स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए क्योंकि हर किसी का रास्ता एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
2: और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, AI के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किन स्किल्स को विकसित करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे अगले हिस्से में, मगर उससे पहले चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 का गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल ने, बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था जीत गांगुली ने।
1: दोस्तों, हम बात करते हैं उन स्किल्स की जो एक ही क्षेत्र में करियर बनाने के लिए युवाओं के काम आ सकती हैं, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना एक बात है और उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना दूसरी।
0: बिल्कुल, सबसे पहले आती है डिजिटल लिटरेसी और AI टूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लगातार सीखते रहने की आदत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
1: और अगर कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और डेटा हैंडलिंग जैसी स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। वहीं मैनेजमेंट या मार्केटिंग में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स AI के प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कौमुदी, लेकिन एक सवाल हमारे युवा श्रोताओं के लिए, क्या AI सीखने के लिए आपको शुरुआत से ही एक्सपर्ट होना ज़रूरी है?
1: बिल्कुल नहीं प्रतिभा,

0: बात बेसिक कंसेप्ट से की जा सकती है, छोटे प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेस और अपने क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल को समझना एक अच्छी पहल है।
1: तो याद रखिए, करियर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को समझने के साथ

0: अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिम्बा का गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी थी राहत फ़तेह अली खान ने, तनिष्क बागची और असीस कौर, गीतकार थे रश्मि विराग और संगीत दिया था तनिष्क बागची ने।
1: प्रतिभा, अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद आज कई युवाओं के मन में है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्या इसका असर हमारी फ्यूचर जॉब्स पर भी पड़ेगा? एआई काम करने के तरीके को बदल रही है, कुछ टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे रोल्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी विकसित हो रही हैं जिनमें एआई के साथ काम करने की क्षमता ज़रूर बढ़ेगी।
0: यानी आने वाले समय में सिर्फ यह जानना काफ़ी नहीं होगा कि एआई क्या कर सकती है, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी होगा कि हम एआई का इस्तेमाल अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टूडेंट मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता है। वो एआई की मदद लेके कस्टमर डेटा को समझने में, कैंपेन आइडियाज़ तैयार करने में और मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजंस के लिए ह्यूमन जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी होंगे।
0: तो कॉमेडी, यहाँ से एक प्रैक्टिकल बात सामने आती है कि एआई को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखने के बजाय उसके साथ काम करना सीखना भी करियर प्रिपरेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
1: और इसके लिए शुरुआत बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपने फील्ड से जुड़ी किसी

0: छोटे से टास्क को चुनिए, एआई टूल का रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके आउटपुट को खुद वेरीफाई करना सीखिए। क्योंकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उसके साथ हमारी समझ और जिम्मेदारी भी विकसित होगी।
1: तो कौमुदी, अब सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आज से ही एआई में करियर बनाने की तैयारी करना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से की जाए?
0: प्रतिभा, शुरुआत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से की जा सकती है। सबसे पहले एआई के बेसिक कंसेप्ट समझिए, फिर अपने फील्ड से जुड़े टूल्स और एप्लीकेशन सीखिए। छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना और लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करना भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है।
1: और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई से मिलने वाली जानकारी को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने के बजाय उसे वेरीफाई करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और याद रखिए, करियर का रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। अपनी रुचि को पहचानिए, सीखते रहिए और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को तैयार करते रहिए। और इसी के साथ श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, अभी आपने सुने अमिताभ भट्टाचार्य के बोल फिल्म मेट्रो इन दिनों से, अरिजीत सिंह की आवाज़ और प्रीतम के संगीत में।
1: तो दोस्तों, अब समय है रोजगार समाचार का, जहां हम आपको बताएंगे नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बिल्कुल, और आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है SSC CHSL 2026 भर्ती से जुड़ी।

0: अगर आपने 12वीं कक्षा पास की है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है।
1: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने CHSL 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 2500 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
0: और सबसे जरूरी बात, इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं फीस जमा करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है।
1: अब बात करते हैं योग्यता की। LGC और PA जैसे पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं DEO पद के लिए 12वीं स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स विषय होना आवश्यक है।
0: आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी।
1: आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए है, जबकि SC ST और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 0 है।
0: और चयन प्रक्रिया में Tier 1 और Tier 2 परीक्षा भी शामिल है।
1: तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और बाकी जरूरी शर्तों को जरूर चेक करें।
0: और आवेदन करने के लिए उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर नज़र बनाए रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन को समय रहते तैयार रखिए।
0: फिलहाल रोजगार समाचार में इतना ही। दोस्तों, अब इसी के साथ एक नज़र घड़ी की सुइयों पर भी डालते हैं, जो इशारा कर रही हैं कि हमारी बातचीत को अब विराम देना होगा।
1: आज चतुर्मास के संदेश से लेकर वन्य जीव संरक्षण और AI में करियर की संभावनाओं तक हमने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की।
0: उम्मीद है आज की छोटी सी बातचीत आपके लिए कुछ नई जानकारियां और सोचने के लिए कुछ नए पहलू लेकर आई होगी।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषय और नई बातचीत के साथ।
0: तब तक के लिए सुनते रहिए युववाणी FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। नमस्कार।

तो ये था आज का कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 6 बजने को हैं। अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम भजन संध्या, जिसमें अगले 30 मिनट तक हम भक्ति, श्रद्धा और संगीत के माध्यम से जुड़ेंगे ईश्वर से। भक्ति संगीत न केवल मन को शांति देता है, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी से, जिनकी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। वे बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। शुरुआत करते हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण भजन से।

तो ये था बेला सुलाखे द्वारा गाया गया भजन। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की इस मंगलमयी वंदना के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के सुपुत्र हैं और उनके आशीर्वाद से हर कार्य शुभ होता है। अब चलिए उसी दिव्य शक्ति के स्रोत उनके पिता देवों के देव महादेव की आराधना की ओर बढ़ते हैं।

कविता पौड़वाल और विनोद राठौर की आवाज़ में अभी आपने सुनी देवादिदेव महादेव की स्तुति में भजन। भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति ने मन को गहराई और शांति से भर दिया है। शिव ही आदि हैं और अनंत भी, जिनकी भक्ति आत्मा को निर्मल कर देती है। अब इसी भक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उन भगवान की ओर जिन्होंने प्रेम और जीवन का सुंदर संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण।

अनूप जलोटा की आवाज़ में इस मधुर भजन की भक्ति ने मन को आनंद से भर दिया। श्री कृष्ण ने हमें कर्म, प्रेम और धर्म का अद्भुत ज्ञान दिया है। अब बढ़ते हैं उन्हीं विष्णु अवतार की ओर जिन्होंने धरती पर आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: सभी किसान भैया हरों को और प्यारी प्यारी बिन्ना हरों के संग हमारे सभी जेठे सियानों को खूब स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में। तो सबसे पहले स्वीकार करें पंचो अपनी रानी बहन की नेह नमन और दो ही हाथ जोड़ के पहुंचे राम राम जय सीताराम। भैया बिन्ना हरों देखो लग गए हैं गणेशोत्सव और जगह जगह विराजे हैं हमारे गणपति बब्बा विघ्नहर्ता। तो आप सभी के गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता सबके कष्ट हर लें और भैया हरों पर्यावरण को बचाने के लावे हमें इको फ्रेंडली गणेश जी विराजने चाहिए और सबसे अच्छी बात कि खेतों में अपन के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए तभी तो पर्यावरण बचे और हमारी खेती भी सुरक्षित हुई है और बप्पा भी खुश हो जाए हैं। तो भैया हरों देखो हमारे गाँव और घर की ज़मीन हमारी होए एक लाने बहुत ज़रूरी है कि हमारे नाम पर सबरे कागज होने चाहिए। किसान भैया हरों भारत सरकार चला रही है स्वामित्व योजना, इसमें ड्रोन से मैपिंग हुई है, गांव-गांव के आबादी वाले इलाकों में सर्वे हुआ है और जमीन जायदाद के सटीक नाप जोक हो जाए हैं, स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी मिल जाए है और एक ही सर्वे के बाद मकान मालिक के स्वामित्व कार्ड यानी जमीन को पक्को कानूनी कागज अधिकार अभिलेख मिल जाए है। इसे फायदा जे हुए भैया हरों बैंक से लोन ले वो आसान हो जाए है, जमीन के झगड़े कम हो जाए हैं और भैया हरों गांव को विकास भी हुई है। कैसे हो जाए है, कैसे ई डेटा से ग्राम पंचायतों को गांव के विकास सड़क और नालियों की योजना बनावे में मदद मिल है। तो भैया उतई एक बात और है कि भैया बीजोपचार भी हमारी खेती किसानी के लाभ बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जैसो बो हो वैसो काट हो, तो फसल की अच्छी पैदावार के लाने बोनी के पहले बीजोपचार करबो बहुत ही जरूरी है। बीजोपचार करवे से का होत है कि फफूंदी नाशक कीटनाशक और जैव उर्वरक से उपचारित कर लें तो इससे भैया बड़े फायदा होते हैं। बीज और मिट्टी जनित रोगों से सुरक्षा मिल जाता है, अंकुरण में सुधार हो जाता है, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होत है और भैया हरो जैव उर्वरक कल्चर को असर खूब अच्छो होत है। तो भैया हरो आप सभी जने बुवाई के पहले बीज उपचार जरूर करने ताकि आपके अच्छों से अच्छे आपके उत्पादन मिल सके। और भैया हरों देखो का होत है कि हमारे जो ढोर बछेरू हैं हमारे मवेशी हैं बीवी हमारे परिवार को हिस्सा हैं, अगर बे तंदुरुस्त रहे हैं तो दूध की नदियाँ बह हैं। तो भैया हरों जब दूध की नदी बह हैं तो कहू हुए जेब हरी भरी सुई हो जाए है। तो भैया हरों एलाने आप किसान वाणी में अब सुन है महेश सोनी के संगे पशु चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान गुप्ता से, वे बता है कि दुधारू पशुओं के होबे वाले सामान्य रोग और निदान। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम किसान वाणी कार्यक्रम में बातचीत करेंगे दुधारू पशुओं में होने वाले सामान्य रोग एवं उनका निदान। किसान भाइयों आप भली भांति परिचित है कि पशुधन जो है हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम इसलिए पालते हैं कि वो हमारे काम आ सके। खास तौर से दुधारू पशु है उनका तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, यदि ज़रा सा भी वो अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे सामान्य रोग हैं और उनका घर पर ही हम किस तरह से निदान कर सकते हैं, इन तमाम बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी जो पशु रोग विशेषज्ञ है, साथ ही साथ वो जो है उनका खेती किसानी में भी लंबा अनुभव है और वो पशुओं

0: आपको जो तमाम रोग होते हैं और उनकी जो व्याधियां होती हैं उनको किस तरह से आपको घर पर ही दूर करना है, ये भी तरीके बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार किसान भाइयों।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारे जो पशु हैं उनको कोई बीमारी है या वो किसी तरह का उनको रोग है, तो हम कैसे पहचाने या शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं?
1: ये सबसे अच्छा सवाल है। पशु बोलकर तो अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, और दूसरी बात ये है कि कोई भी सामान्य परिस्थिति के अनुसार यदि पशु खाना खा रहा है, अपनी गतिविधियाँ कर रहा है, यदि उस गतिविधि के विपरीत चला जाए तो हमें सामान्यतः मान लेना चाहिए कि वो किसी तरीके से बीमार है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। इसलिए हमें को उनकी हरकतों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि हमारा पशु अचानक खाना या जुगाली करना कम कर दे या बंद कर दे, सुस्त होकर एक कोने में खड़ा हो जाए या बैठा रहे या दूसरे जानवरों से झगड़ा करता रहे, उसे कान ठंडे पड़े या आँख या नाक से पानी निकले, या फिर उसका दूध अचानक उत्पादन से गिर जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा पशु स्वस्थ नहीं है और उसे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। ज़्यादातर जो पशुओं में, हमारे खासकर जो हमारे देश में जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है सामान्यतः?
1: चार पांच ऐसी बीमारियां हैं जो महामारी की तरह फैलती हैं, वही मुख्य बीमारियां होती हैं जिनका हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। जैसे रोगा, खुरपका मुंहपका जिसे कहा जाता है, FMD इंग्लिश में कहते हैं, इसमें पशु के मुंह और पैर में छाले हो जाते हैं। गलगोटू दूसरी बीमारी है जिसको अंग्रेजी में हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है, यह बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। इसमें पशु के गले में सूजन आती है और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। यह भैंसों में ज़्यादा होती है कैटल्स की अपेक्षा। तीसरी बीमारी लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर जिसे कहा जाता है, जिसके में पशु के पैर के पीछे वाले हिस्से में सूजन आ जाती है और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। यदि उस स्थान को पुट्ठे को उसके हाथ लगाया जाए तो वो चुरचुराता है और उसमें से कभी कभी काले रंग का मवाद भी निकलता है। उसके बाद एक रोग है किसान भाइयों, थनेला, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रोग कहा जाता है किसानी दुधारू पशुओं में, जिसे अंग्रेजी में मस्टाइटिस कहा जाता है। यह दूध देने वाले पशु के अयन यानी थन में की बीमारी है, जिसमें थन सूज जाता है और दूध खराब हो जाता है। कई बार दूध में से मवाद या रक्त भी निकलने लगता है। इसके अलावा एक बीमारी जो अभी काफ़ी समय से फैली हुई है, जो कुछ 3-4 सालों से किसानों को परेशान भी कर रही है, वो है लंपी स्किन डिजीज़। इसमें शरीर में गठाने बन जाती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये काफ़ी चार पांच बीमारियां आपने बताई है। आपने जिक्र किया खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का, तो ये बीमारी ज़्यादातर किसान भाइयों के मुंह से भी हम सुनते हैं कि उनके पशु को ये हो गया है। तो आप बताएं कि यदि ये बीमारी हो जाती है तो इसका बचाव किस तरह से करना चाहिए?
1: किसान भाइयों, खुरपका मुंहपका एक बहुत ही संक्रामक वायरस से जनित रोग होता है। इसके बचाव का सबसे अचूक उपाय तो टीकाकरण ही है, जिसमें समय पर टीकाकरण यदि करवा लिया जाए तो हम अपने पशु को इस रोग से बचा सकते हैं। साल में 2 बार आमतौर पर सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च में इसका टीका लगवा लेना चाहिए। वार्षिक टीके रहते हैं, हम किसी भी समय लगा सकते हैं। यदि किसी पशु को यह हो जाए तो उसके खुरों को लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धोना चाहिए और उसे दूसरे स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर देना चाहिए। इसमें एक खास बात यह है कि जो लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे हमें पानी में घोल लेना चाहिए। घोलने के पश्चात एक जो है मग्गे में इस घोल का अलग निकाल लेना चाहिए और पशु के चारों खुरों को एक एक करके हमें इस घोल में डालना चाहिए। इसके बाद बचे हुए पानी को पशु के शरीर के ऊपर हमें डाल देना चाहिए, जैसे नहला दिए हमने उसको,
0: जी
1: और जो बचा हुआ पानी जो साफ पहले हम निकाल चुके हैं, मतलब लाल दवा का पानी, उसको हम पशु के मुंह में किसी मशाल जैसी लकड़ी पर कपड़ा बांध करके, जैसे दतून किया जाता है इस तरीके से ले करके उसके मुंह में हम डाल के उसके मुंह के छालों का भी हम इस तरीके से निदान कर सकते हैं। अगर वो पी भी लेगा तो ज़्यादा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दवा है वो फ़ायदा ही करेगी।
0: बिल्कुल। तो इस तरह से यदि हम बचाव करते हैं तो ये इलाज का भी काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में अक्सर गलघोंटू रोग हो जाता है पशुओं में, तो थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से ये रोग बढ़ जाता है और यदि ये बढ़ता है तो फिर हम किस तरह से रोकें इसको?
1: गलगोटू भी एक जानलेवा बैक्टीरिया से होने वाली, जैसे FMD वायरस से होने वाली बीमारी थी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इससे पशु को बहुत तेज बुखार आता है, पहले गला उसका सूज जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और उसके गले सूजने के कारण वो पानी और खाना निगल नहीं पाता और गले से घर घर की आवाज़ आने लगती है। कई बार जो है 12 से 24 घंटे के अंदर ही पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसका सीधा बचाव यही है कि मई जून के महीने में यानी बरसात आने के पूर्व है ना गलगोटू का टीका यानी एचएस वैक्सीन हम पशु को अनिवार्य रूप से लगा लें। इसके लिए पशु चिकित्सालय जो सरकारी हैं उनसे संपर्क करके हम अपने पशु का टीकाकरण करवा सकते हैं।
0: अच्छा, ये टीका केवल मई जून में ही लगता है, कभी
1: हाँ,
0: लग सकता
1: नहीं, ये टीका मई जून में लगेगा।
0: अच्छा, मतलब इस समय का विशेष रूप से ध्यान किसान भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि जो पशु है उनको थनेला रोग हो जाता है, तो उसके कारण से जो है दुग्ध उत्पादन तो प्रभावित होता ही होता है। कई बार जो है किसान भाई डरते भी हैं कि इस पशु का दूध उपयोग में लेना है या ना लेना है, और वैसे भी पशु को तकलीफ होती है, तो ये बताएं कि यह थनेला रोग जो है किस तरह से होता है और इसकी रोकथाम कैसे होगी।
1: सबसे प्रथम बात किसान भाइयों की, थनेला रोग एक मैनेजमेंट का रोग है यानी प्रबंधन का रोग है। यदि हमने अपने जानवर के थन का और उसके खान पान और उसके खड़े होने के अंदाज का ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई नहीं रखी, तो थनेला रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थनेला रोग एक खराब थन से दूसरे अच्छे थन को ख़राब कर सकता है, और यह मुख्य रूप से गंदगी के कारण होता है। यदि दूधिए के हाथ खराब हैं, दूधिए के हाथ में कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है, तो वो अपने हाथों से उसके थन को दे सकता है। और कई बार क्या होता है कि पशु का दूध निकालने के बाद अचानक पशु ज़मीन पर बैठ जाता है, तो वो विशेष ध्यान रखना है कि अगर अपन ने दूध दुहा है तो तुरंत पशु को हमें ज़मीन पर बैठने नहीं देना है, अन्यथा थन में जब दूध निकलता है तो वैक्यूम का काम करता है, और जब दूध पूरा निकल जाता है तो थन वैक्यूम का काम करते हुए बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचता है। यदि ज़मीन ख़राब होगी, ज़मीन पर बैक्टीरिया होंगे या ज़मीन पर कोई तरह की गंदगी होगी, तो वो सक्शन करके वैक्यूम के माध्यम से सीधा थन के अंदर प्रवेश करेंगे, और दूध हमें पता है कि फटने मतलब दूध के फटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि वो बर्तन में अगर फट सकता है तो जानवर के थन में भी वो दूध फट सकता है, तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे तो वो दूध को फाड़ देंगे, उसके कारण जो है थनेला रोग की फैलने की संभावना बनती है।
0: सही बात है, तो किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना है अपने पशु को बैठने उठने और उसकी जो व्यवहार है पशु का, वो जो है मुख्यतः थनेला रोग उसी पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखें थोड़ा। और डॉक्टर साहब, एक लंपी वायरस का बहुत ज़्यादा जो है नाम सुना जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका, और कई किसान भाई बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पशुओं को इस तरह का वायरस लग जाए, तो ये क्या होता है और ये किस तरह से पशुओं में फैल रहा है, नुकसान क्या क्या है इसके।
1: किसान भाइयों, सबसे पहली बात, ये एक वायरस जनित रोग है, जो कि वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसका भी फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। ये पॉक्सीवायरिडे परिवार के कैप्री पॉक्स वायरस द्वारा होने वाले एक मवेशी का रोग है। इसके फैलने का तरीका ये रहता है कि मक्खियों, मच्छरों और पिस्सुओं के काटने से संक्रमित पशु के आने से फैलता है, यानी कि अगर संक्रमित पशु को काट के अगर स्वस्थ पशु को किसी किल्ली पिस्सू मच्छरों ने काट लिया तो स्वस्थ पशु भी हमारा बीमार हो जाएगा। इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं जो आंखों से दिखने वाले होते हैं, इसमें शरीर की त्वचा पे बड़ी बड़ी गांठें और दाने बनना शुरू हो जाते हैं, पशु को बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, उसका दूध अचानक बहुत कम हो जाता है, उसके आंखों से क्योंकि तेज़ बुखार होगा तो आंखें गर्म होंगी, आंखें लाल होंगी तो आंखों से पानी भी निकलेगा, साथ ही साथ मुँह से कई बार लाल निकलना भी शुरू हो जाती है, पैरों में काफ़ी सूजन होती है, और चूँकि घटाने रहती हैं तो चलने में भी इसको काफ़ी परेशानी होती है।
0: तो ये तो आपने जो है लक्षण बताए हैं, अब बचाव और निदान यानी कि उसका उपचार कैसे करना है ये आप ज़रूर बताएं।
1: टीकाकरण ही इसका उपाय है और उपचार है। स्वस्थ पशुओं को हमें गोटपॉक्स वैक्सीन जो है, जहाँ विशेष लंपी वैक्सीन जो आने लगी है, इसको लगवाना सबसे प्रभावी बचाव है। जैसे गोटपॉक्स वैक्सीन भी कार्य करती है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात कि अगर जैसे ही लगे कि कोई पशु को लंपी हो रहा है यानी शरीर पे दाने हो रहे हैं, गठाने बन रही हैं, तो तुरंत उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दिया जाए। उसके बाद तेज़ बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा का उपयोग किया जाए। अगर वो गांठें फट रही हैं तो उस पर एंटीसेप्टिक मलहम या एंटीसेप्टिक दवा का स्प्रे किया जाए, ताकि मक्खी मच्छर उस पर ना बैठें, तो और नहीं बैठेंगे तो दूसरे स्वस्थ पशु पर जाएंगे नहीं, और पशुओं के रहने वाले स्थान पर मच्छर मक्खी भगाने का हमें उपाय करना चाहिए। पशुओं को नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का हम छिड़काव करके हम इसको बचा सकते हैं। बाड़े की सफाई करना चाहिए, जिसमें हम चूना या सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़क करके गंदा पानी और गोबर को ना जमा होने दें, इसका हम व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि झुंड में अन्य पशु स्वस्थ हैं तो पशु चिकित्सक से संपर्क कर तुरंत जो है गोटपॉक्स वैक्सीन हमें लगवा लेना चाहिए। और आप घरेलू और देसी उपाय की बात करें किसान भाइयों, तो शुरुआती लक्षणों में आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताता हूँ मैं आपको। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लड्डू आने लगे हैं, जिसमें आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी सभी को 20-20 ग्राम मात्रा में लेकर जो है गुड़ में, इसी 20 ग्राम गुड़ में ही मिलाकर हम सुबह शाम पशु को खिलाएंगे तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। काढ़ा भी आता है जिसमें एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते, 5 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम सौंठ पाउडर और 10 ग्राम काली मिर्च को गुड़ में मिलाकर लड्डू बना लें और पशु को दें। काढ़ा बनाकर भी इसका दिया जा सकता है। घाव के लिए नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर या पानी में फिटकर ही 100 ग्राम और नीम के पत्ते को उबालकर जो घोल बनाया जाए उससे पशु को नहलाएं या उस पशु के घाव को हम साफ कर सकते हैं। डेयरी में सबसे बड़ी समस्याओं में एक थनेला है और दूसरा है पशुओं में बांझपन।
0: जी,
1: जिसमें बांझपन होती है, इसमें बच्चा नहीं होता। गाय गर्मी पे आती है लेकिन बच्चा नहीं होता, बच्चा लेती नहीं है। रिपीट ब्रीडिंग होने लगती है। उसके कई कारण होते हैं, इसमें 2-3 मुख्य कारण ये है कि पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे यदि पशु के पोषक शरीर में पोषक तत्वों में जैसे विटामिन और मिनरल्स में भी जैसे फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, इसकी कमी होगी या आयरन है तो इसकी कमी होगी तो समय पर वो गर्मी में नहीं आएंगे। जैसे कई बार होता ना कि कई किसान भाई कहते हैं कि मेरा जानवर गर्मी पर नहीं आया, या गर्मी पर आने में समय उसका जो 21 दिन पर गर्मी पर आता है 21 दिन पर ना आके वो लंबा खिंच गया पीरियड उसका, होता है ऐसा कई बार
0: जी।
1: तो वो समस्या रहती है, वो मिनरल और विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो। हर 3-4 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवा हम दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम साल में 2 बार अवश्य करें
0: जी,
1: है ना, जिससे कि डिवर्मिंग दवा दें, कृमिनाशक दवा दें। इसमें मैं बताता हूँ किसान भाइयों, देसी दवा के अंदर जैसे कई बार होता है कि पशु गर्भधारण किया हुआ है उस समय में हमको दवा देनी है, तो उस समय अगर क्या दवा दें, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो हम देते हैं कृमिनाशक उससे कई बार

0: आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: तो किसान भैया हरो, अपन ने सुनी खूब इनोनी उपयोगी जानकारी डॉक्टर अंशुमान गुप्ता से कि हमारे मवेशियों को अपन के ध्यान धरने हैं, तो हम आओ अच्छो हुए पशुधन। और भैया हरो, अब सुनाते एक बढ़िया गणेश वंदना।

0: किसान भैया हरो, अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया हरो, देखो कि फूल और बगिया की बात ना हो ऐसे हो ही नहीं सके, तो महकत भाई वाली बात कर लें अपन। तो फल फूल के पेड़ जरूर लगाने चाहिए अपनी मेढ़न पे, कहते नहीं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो फलों की खेती से खेतों की रौनक और बढ़ जात है और किसान भैया हरों की कमाई दुगनी चौगनी हो सकत है। तो बगिया लगा के भी अपन बहुत अच्छे तरीका से आमदनी बढ़ा सकत हैं। ए विषय पे लघु वार्ता चलो सुनत हैं अपन हो रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से कि फल उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैसे नए पौधा रोपें और कैसे देखभाल करें।
1: किसान भैया, मध्य प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल जो होते हैं उनकी खेती होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आम, अमरूद से लेके बेर, आंवला और कुछ नए प्रजातियों के फल जो हाल ही में मध्य प्रदेश में लगने लगे, जैसे खजूर की बात करते हैं, एवोकेडो की बात करते हैं, इनकी भी खेती मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शुरुआत हो रही है। तो किसान भाइयों, फलों की खेती का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें जो होता है श्रम कम लगता है और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके इसमें हम ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करने से हमें सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ता और आज के समय में तो ऑटोमेशन जैसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आप घर बैठे ही अपने खेत को सिंचित कर सकते हैं। तो और इसके अलावा खरपतवार मुक्त रखने के लिए मल्चिंग जैसी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में कौन कौन से फलों को लगा सकते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अच्छा जो उत्पादन होता है वो अमरूद की फसल का होता है। इसके अलावा आम भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इसके अलावा आप देखेंगे कि कटहल, चीकू जैसी फसलें भी हम मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो जहां पर कम वर्षा होती है और ज़मीन थोड़ी सी हल्की है, वहां पर आंवला, बेर, सीताफल जैसी फसलों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फल हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बड़वानी की बात कर

0: खरगोन की बात करते हैं, यहाँ पर पपीते की, खंडवा की बात करते हैं, बुरहानपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर केले और पपीते की फसलें भी बड़े व्यापक पैमाने पर लगाई जा सकती हैं। तो आप इन क्षेत्र के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने पास उपलब्ध सिंचाई के हिसाब से आप फलों की खेती कर सकते हैं। अब इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए आवश्यक होती है कि जो हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्में हैं उनका आप इसमें प्रयोग करें। जैसे कि अमरूद की बात करते हैं तो इसमें कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे ललित है, श्वेता है, धवल है, इसके अलावा लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ये किस्में जो हैं अपने प्रदेश में अच्छा उत्पादन देती हैं। इसी तरह से अगर आम की बात करते हैं तो आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अंबिका, ऐसी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें नींबू और संतरे की, तो संतरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगने वाली फसल है, तो संतरे की खेती कर सकते हैं। और में जो नागपुरी संतरा होता है वो किस्म अपने इधर के लिए उपयुक्त हो। नींबू एक ऐसी फसल है जो उत्पादन बहुत अच्छा देती है और बाजार में अगर रेट मिलता है तो इससे बहुत अच्छा फायदा किसान भाई ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि विक्रम हुआ, प्रमालनी हुआ, कागजी हुआ, ये ऐसी किस्में हैं जो अपनको अच्छा उत्पादन देती हैं। अब कुछ दूसरी फसलों की बात करते हैं, जैसे कि आंवले की बात करते हैं, सीताफल की बात करते हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इनकी भी बहुत अच्छी किस्में, जैसे नरेंद्र आंवला 7 है, ये बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा सीताफल की भी कुछ लोकल किस्में हैं जिनको हम लगा सकते हैं। किसान भाई, ये बहुत बार हमारे आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हम अनार की खेती कर सकते हैं, तो अनार की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, हल्की ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो मध्य प्रदेश में लगभग ज्यादातर जगह पर पानी अधिक होता है, तो अनार को आपको उस हिसाब से लगाना है। अब आपने ये किस्में तो ले ली, अब इसको लगाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अभी लगाने के लिए बिल्कुल समय चल रहा है। इसके बाद अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप अन्य समय में भी, दिसंबर जनवरी तक भी बगीचा लगा सकते हैं, लेकिन जो पौधे लें वो सही जगह से लें और ग्राफ्टेड कलमी पौधों का ही प्रयोग करें, बीजू पौधे आप इसमें ना लगाएं, इसको ध्यान में रखें। और बिल्कुल आप निश्चित दूरी पर खेत को तैयार कर लें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की पहले से व्यवस्था कर दें, मल्चिंग की आप व्यवस्था कर दें और निश्चित दूरी पर आपको इसमें खेत में आपको पौधे को लगाना है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे उद्यानिकी विभाग के माध्यम से इसमें अनुदान की व्यवस्था भी रहती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उस पर भी अनुदान की व्यवस्था रहती है, इसके अलावा मल्चिंग पर भी अनुदान की व्यवस्था रहती है, तो उन चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें बगीचा लगा देते हैं उसके बाद समय समय पर इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होने से आपको सुविधा हो जाती है कि आपको उर्वरक भी इसमें घुलनशील माध्यम से ही आप दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त फल है उन्हीं को लगाएं, उपयुक्त किस्मों को लगाएं, जहां तक संभव हो ग्राफ्टेड वेराइटीज को ही या कलमी पौधों को ही लगाएं। तो किसान भाइयों, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप फल बगीचे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसकी देखभाल से आने वाले समय में आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: और किसान भैया हरो, किसानवाड़ी कार्यक्रम में अब मंडी के भाव से बता दें, आगे पीछे होत रहे थे, मनो मंडी में सोयाबीन के जो भाव रहे 4600 से 6150 रुपया तकन रहे देखन मिले, और गेहूं 2400 से 3200 तकन मिलो देखबे, और डॉलर चना की अगर बात करें तो 5500 से 8500 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से बिकत भाव देखो गौ है। और भैया लहसुन और प्याज के भाव भी बढ़िया तेजी देखन मिली है। तो भैया हरो, आप अपने सुविधा अनुसार, अपनी मंडी के भाव के अनुसार आप अपनी फसल और उत्पादन बेच सकत हैं। और भैया हरो, देखो अब हो रही है चलती की विरिया कार्यक्रम से लेने हैं बेदा, तो अपनी रानी बहन के देव अनुमति और स्वीकार करें अपनी रानी बहन की, राम राम, जय सीताराम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले,
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहा है।
3: सच
2: है एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आजकल जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: तो ये था प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं आकाशवाणी केंद्र भोपाल, और यह कार्यक्रम प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मध्य प्रदेश है।
1: कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंतनाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

आज 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर आप सुनेंगे मालवी गीतारी गूंज। आठ बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। 10:00 आप सुनेंगे 20th edition ऑफ एशियन गेम्स 2026। 6:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर आप सुनेंगे राग रजनी। रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आज रात 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 11:10 पर आप सुनेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुनेंगे वंदरवार, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे महाकाल वंदन, 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:20 पर आप सुनेंगे सुप्रभात उज्जैन, 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे उज्जैनी आरजे, 9:30 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स, 10 बजे आप सुनेंगे उज्जैन दर्शन, 10:30 पर आप सुनेंगे महिला सभा, कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग, 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी न्यूज़ बुलेटिन, 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफ़र, 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 2:10 पर प्रादेशिक समाचार, 2:15 पर दोपहर का समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे आप सुनेंगे आज के मेहमान, कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी, 6 बजे आप सुनेंगे भजन संध्या, 6:30 पर फिल्म संगीत, 7 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर आप सुनेंगे माटीरी बात, 8 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, कल 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू समाचार, 9:30 पर चर्चा का विषय, 10 बजे आप सुनेंगे 20th edition ऑफ एशियन गेम्स 2026, 10:20 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश, 10:30 पर आप सुनेंगे राग रजनी, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही समय में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेंगलुरु में टेलीकॉम उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल हुए। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल से होगी और मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कैबिनेट ने आज 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए करीब 960 करोड़ रुपए की सहमति दी गई। इन खेल परिसरों के मैदान में स्थायी हेलीपैड भी बनाया जाएगा।
1: खेल जगत के अंदर मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के खेलों का समावेश किया जाएगा। जहां पर 10 एकड़ से ज्यादा जमीन प्राप्त होगी वहां पर इंडोर और आउटडोर दोनों बनेंगे, उसकी लागत 7 करोड़ रुपया होगी और मल्टीपर्पज खेल रहेंगे।

0: कम से कम 10 से 12 खेलों का 5 से 6 खेल इंडोर में रहेंगे, 4 से 5 खेल आउटडोर के रहेंगे, यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा।
1: कैबिनेट ने ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय के संचालन के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की निरंतरता को मंजूरी दी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नीमच के जावद नीमच सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। राजगढ़ की सुठालिया और पार्वती रिंसे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से 88,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। कैबिनेट ने प्रदेश की बिजली जरूरतों के लिए भी 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्वालियर में बन रहा दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा जहाँ दूर संचार के उपकरण और उनके पुर्जे बनाने वाली करीब 24 से 25 इकाइयां लगेंगी। करीब 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले क्षेत्र के पहले चरण के लिए 170 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल से होगी। 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। राज्य सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में 1,000 बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। बसों में सीसीटीवी और जीपीएस लगाए जाएंगे, जिससे उनकी लोकेशन की निगरानी भी हो सकेगी। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक करीब 15,000 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में सड़कों और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। मार्गों की जर्जर हालत और खुले सीवरेज नेटवर्क देखकर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही 10 दिन में बंद स्ट्रीट लाइटें चालू करने और सड़कों से अतिक्रमण हटने के भी आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। आइए जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना लोगों के जीवन को कैसे बदल रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो भोपाल में भोपाली बटवे काफी प्रसिद्ध हैं। हस्तशिल्प कढ़ाई कला जरदोजी को सजाते आ रहे सुनील पारेख ने बताया कि उनकी 11वीं पीढ़ी इस काम को इस समय कर रही है। उनके द्वारा करीब 50 परिवारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस काम में बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिला कर्मचारी भी अपने हुनर दिखाने का काम करती हैं। सुनील पारेख ने बताया कि
3: हमारे पूर्वजों ने भी 10 पीढ़ियों से इसी काम को संभाला है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम भी ये दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करते रहेंगे। जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो एक अमानत है, भोपाली बटुआ जो जरदोजी और मोती के वर्क पे होता है, साधारण साटन के कपड़े पे, मक्खन के कपड़े पे, जूट के कपड़े पर और कई तरह के मजबूत कपड़ों पे ये काम किया जाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है।
2: सुनील पारेख ने बताया कि वह अपने पुत्र काना पारेख के साथ लगातार रियासतकालीन इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में आज भी इस काम की काफी पूछ परख शहर में देखने को मिलती है। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माओगंज में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीतापुर हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना से 1,20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की भी अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में आज डोल 11 पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकला। पीपल चौक से शुरू हुए इस जुलूस में भोपाल के राजा और दूल्हे राजा की प्रतिमाएं शामिल रहीं। नीम करोली बाबा अहिल्याबाई होलकर और महात्मा गांधी के रूप में सजे कलाकारों ने लोगों का ध्यान खींचा। जुलूस के मद्देनजर पुराने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया। ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी और इसे भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सुचिका तरियाल को भी बधाई दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 सितंबर को सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहेगा। दो दिनों में 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में असर सबसे ज्यादा रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में आज मेरे सपनों का भारत थीम पर चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बिहार से प्रदेश भ्रमण पर आए 16 सदस्यीय इन्फ्लुएंसर दल ने कल इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सौजन्य भेंट की। खंडवा जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों का नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कराया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल नीमच में समन्वित कृषि विकास कार्यशाला सह सेमिनार आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में साप्ताहिक जनसुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें स्वरोजगार योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: 102.5 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज।

तो राम राम मारा मालवा का भाई बहनों, आने सबके जय श्री महाकाल। तो कैसा हो तुम सब, मजे में न मौज में तो होनी। हूँ तमारो भाई कुलदीप शर्मा, एक बार फिर तमारो सबको स्वागत करूँ अपना इना विशेष कार्यक्रम मालवी गीत हरी गुंज में। तो भाई बहनों, मालवा की मिट्टी में लोक जीवन की अपनी एक अलग मिठास है। यहाँ मिठास कदी कविता बनी के मन में उतरे है, कदी गीत बनी के कान में गुंजे है, अने कदी जल झुलनी एकादशी डोल ग्यारस जैसा लोक पर्व हूं में भक्ति अने परंपरा का रंग में दिखाई दे। आज अपन इन सब बारे में बात करांगा, यानी मालवी कविता की, मालवी गीत हूं की, अने डोल ग्यारस की लोक परंपरा की, जिनमें मालवा की बोली, मिट्टी, रिश्ता, लोक जीवन अने अपनोपन, ये सब एक साथ महसूस होएगा। जदे अपनी बात अपनी बोली में सुनवा के मिले है तो मन में एक अलग ही अपनोपन महसूस हो ही है। यही तो मालवी बोली की खूबी है, सीधी बात, सादो अंदाज अने दिल तक पहुँचवा वाली मिठास। तो आओ मालवा की इन्हीं सोंदी खुशबू का साथ शुरुआत करा, हाँ, अपना मालवी बोली में मालवी समाचार से। तो आओ आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार।

नमस्कार, राम राम। समाचार उनका साथ हूँ, तुम्हारा भाई कुलदीप शर्मा। सबसे पहला इन बुलेटिन का खास समाचार। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज परिवहन, खेल अन्य बिजली से जुड़ा घना फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र का बड़ा उद्योगपति अन्य निवेशक उनका साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल हुआ। अने भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती लियो है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज परिवहन, खेल अने बिजली से जुड़िया घना फैसला लिया गया। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बतायो कि प्रदेश का हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इकालिए 940 करोड़ रुपया को प्रावधान करो गयो है। इना कॉम्प्लेक्स का मैदान में एयर एम्बुलेंस सेवा का लिए हेलीपैड भी बनाया जाएगा। वहीं 25 सितंबर से भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी, जिका तहत साल 2030-31 तक करीब 15,000 बस चलावा को लक्ष्य रखो गयो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में टेलीकॉम क्षेत्र का बड़ा उद्योगपति अने निवेशक उनका साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होया। इना दौरान वी ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावना हुन पे चर्चा करी रहा है। ग्वालियर में बनी रियो दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र का एक ऐसो औद्योगिक क्षेत्र होएगा जहाँ की जगह दूर संचार का उपकरण अन्य उका पुर्जा बनाने वाली करीब 24 से 25 इकाई हुन लगेगी। करीब 5,500 करोड़ रुपया का निवेश से बनवा वाला इना क्षेत्र का पहला चरण का लिए करीब 170 एकड़ जमीन चिन्हित करी गई है। भोपाल में आज डोल 11 पे गणेश प्रतिमा हुन को विसर्जन जुलूस निकाले गयो। पीपल चौक से शुरू हुआ इना जुलूस में भोपाल का राजा अन्य दुल्हे राजा की प्रतिमा हुन शामिल रही। नीम करोली बाबा अहिल्याबाई होलकर अन्य महात्मा गांधी का रूप में सजा कलाकार हुन ने लोगों को ध्यान खींचियो। जुलूस का मद्देनजर पुराना शहर में यातायात व्यवस्था के लेके खास इंतजाम कराया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती लियो है। टीम ने फाइनल में श्रीलंका के 147 रन से हरायो। यो लगातार दूसरो एशियन गेम्स गोल्ड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीम के बधाई दी अने इके भारतीय क्रिकेट का ये शानदार उपलब्धि बताई। प्रधानमंत्री ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतवा वाली सुचिका तारियाल के भी बधाई दी। अब ये बात मौसम की। प्रदेश में काल से भारी बारिश को नयो दौर शुरू होएगा। मौसम विभाग का मुताबिक 24 अने 25 सितंबर के सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहेगा। दो दिन में 17 जिला हुन में भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। जबलपुर, रीवा, शहडोल अने सागर संभाग में असर सबसे ज़्यादा रहेगा। इंदौर में आज नो कार डे मनाया गयो। आम नागरिक, जनप्रतिनिधि अने अधिकारी हुन इनमें शामिल हुआ। इना क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा अपना बंगला से दो पहिया ई व्हीकल से कलेक्टर कार्यालय पहुँचा। वहीं शहर में कल श्रवण बाधित दिव्यांगजन हुन का प्रति जागरूकता लावा के लिए रैली निकाली जाएगी। आगर मालवा जिला में आज डोल 11 को पर्व मनाया गयो। लकड़ी की सजी डोल में भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की प्रतिमा बिठाई के चल समारोह निकालियो गयो। वहीं कल तेजादशमी पे जिला में धार्मिक आयोजन अने चल समारोह निकालियो गयो, जहाँ की जगह श्रद्धालु हुन ने नाग मंदिर हुन पे निशान चढ़ायो। झाबुआ पुलिस के अपराध हुन की वैज्ञानिक जांच मजबूत करवा का लिए अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। इन्हीं वैन से घटना स्थल पर ही सबूत हुन को संकलन अन्य संरक्षण करी सकेगा। वहीं पुलिसिंग ने पेपरलेस बनावा का लिए थाना का विवेचक हुन के टेबलेट दिया गया अने अब तक 310 पुलिसकर्मी हुन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रशिक्षण दे दियो गयो है। मंदसौर में कल विश्व अल्जाइमर दिवस का मौका पे कार्यक्रम आयोजित करो गयो। मुख्य वक्ता सिद्धार्थ बरोड़ा ने विद्यार्थी हुन के अल्जाइमर बीमारी का कारण, लक्षण अने बचाव का उपाय हुन की जानकारी दी। वहीं सेवा संकल्प अभियान का तहत मेरे सपनों का भारत थीम पे बनाया गया चित्र हुन की जिला स्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो ये था आज का अपना मालवीय समाचार।

0: तो भाई बहनों, अपन बात करिया था मालवा ने मालवी की। तो मालवा की मिट्टी में कविता कोई दूर की चीज नहीं है, या तो अपना रोज का जीवन में घुली मिली हुई है। खेत में हल चलाता किसान होए, आंगन में काम करती दादी होए, स्कूल जाता बच्चा होए, या गांव की चौपाल पे बैठा कोई बुजुर्ग, हर कोई की बात में एक लय मिली जाए है। घनी बार आदमी बिना सोचे ऐसी बात बोली जाए जो सामने वाला का मन में सीधी उतरी जाए, बस यो ही तो है कविता को रंग। मालवी कविता की सबसे बड़ी खासियत इको अपनोपन है। इनमें कोई बड़ा बड़ा शब्द की जरूरत नहीं पड़े। गांव की पगडंडी, कच्चो आंगन, खेत की मेड़, कुआ की पाल, बैलगाड़ी की चाल, सावन की फुहार, माटी की खुशबू अने घर की रसोई से उठतो धुओं, ये सब अपना आप में कविता बनी सकती है। मालवा में जदे कोई बुजुर्ग पुरानी बात याद करके दो लाइन बोली दे तो सुनवा वाला का मन में बरसों पुरानी तस्वीर खड़ी हो जाए है। यही मालवी कविता की खूबसूरती है। बात छोटी हो सकती है पर उको असर घनो गहरो हो जाए है। पहला का टाइम के याद करो, गांव में मनोरंजन का साधक जो है वे कम होया करता था, इतना व्यापक नहीं था। ना मोबाइल थो, ना टीवी थो, ना इंटरनेट थो, पर लोग उनका पास किस्सा था, कहानी थी, लोकगीत था अने अपनी मालवी बोली थी। रात में रोटी खाई के परिवार एक जगह बैठी जातो, कोई पुरानी बात निकाल तो, कोई दो लाइन बोलतो, कोई लोकगीत गाने लागी जाए, बच्चा बच्ची भी उसे ध्यान से सुनता। इना ही कारण कविता खाली किताब में बन चीज नहीं रही है, बल्कि रोजमर्रा का जीवन को हिस्सों भी बनी गई है। मालवा की धरती ने घना कवि अने रचनाकार दिया है, पर मालवी कविता खाली बड़ा कवि उनकी रचना तक सीमित नहीं है। गांव का कोई बुजुर्ग अपने अनुभव में से दो लाइन बोली दे, खेत में काम करती दादी कोई पुरानो गीत गुनगुनाई दे, कोई बच्चा अपनी माटी की बात लिखी दे, ये सब मालवी लोक अभिव्यक्ति की दुनिया का हिस्सा है। मालवी कविता में हास्य को भी घनो सुंदर स्थान है। अपना गाँव में, घर में या छोटी छोटी बात होने में भी मजा मिल सके है। कोई की चाल का बारा में, कोई की आदत का बारा में, या कोई का बोलने का ढंग का बारा में, इन सब का बारा में जब कोई अपनी नकल उतारे तो वो भी एक हंसी और मजाक को एक रूप ले ले है। ये कोई यो मतलब नहीं है कि तुम्हारे यो सब करनो है, सिर्फ एक मनोरंजन का तौर पे ये सब चीज़ करी जाती थी। पर इका मजाक में अपने जो मिले है वो अपनोपन मिले है। मन दुखावा की कोई बात नहीं करे है, या ही मालवी बोली की मिठास है। बात मजेदार भी हुई सके है अने दिल पे भारी भी नहीं पड़े है। आज का टाइम बदली गयो है, मोबाइल में कविता लिखी जा रही है, सोशल मीडिया पे मालवी पंक्ति लोगों तक पहुंची रही है, युवा अपनी बोली में वीडियो बनावा लगी गया है। यो बदलाव बोली का लिए एक नयो माध्यम लेके आयो है। बोली की मिठास तब और ज़्यादा बनी रहेगी जदे नई पीढ़ी उगे अपनाएगा अने अपना समय का साथ उगे आगे बढ़ाएगा। जरूरत बस इतनी है कि नई तकनीक का साथ अपनी मिट्टी की खुशबू बची थकी रहे अने मालवी कविता में इको रंग और ज़्यादा गाढ़ो हो जाए, क्योंकि जदे बात अपनी बोली में सुनवा के मिले है तो दिल का रास्ता सीधी भीतर उतर जाए है भैया। अने अब सुनांगा एक मालवी कवि की कविता। आज अपना साथे जुड़े है कवि विनोद कुमार चौबे जी। आओ सुना उनसे मालवी कविता पाठ। तो आओ सुना यो पाठ अपने।
1: मैं विनोद कुमार चौबे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपके हमें मालवी में कविता पाठ करवाने आयो हूँ। आप सभा ने मारो घणो घणो राम राम और जय महाकाल। तो लो, मैं तुम्हारे सामने बरखा रानी पर आधारित कविता पाठ और अन्य कविता आपके यहाँ में सुनाई रही हूँ। हमारी पहली कविता है कारा बाजरा आई गया। हो उमड़ घुमड़ ने, हो उमड़ घुमड़ ने, बरस बरस ने कारा रे बाजरा आई गया, ये कारा रे बाजरा आई गया। हो उमड़ घुमड़ ने, बरस बरस ने कारा बाजरा आई गया, ये कारा बाजरा आई गया। कि सागर ती धरती पे आई ने लटा लूम ई छई गया, हो कारा बाजरा आई गया, हो कारा बाजरा आई गया। हो उमड़ घुमड़ ने, बरस बरस ने कारा बाजरा आई गया, हो कारा बाजरा आई गया। के कारी कोयल कुकेन है ने मोरिया नाचे गावे, हो कारी कोयल कुके है ने मोरिया नाचे गावे। के बेरी मोर पपीहा बोले, कोरी मोर पपीहा बोले कोयल गीत सुनावे। हो उमड़ घुमड़ ने, बरस बरस ने कारा बाजरा आई गया, हो कारा बाजरा आई गया, हो कारा बाजरा आई गया। के कारी धोरी माटी पे यो लीलो रंग बे छावेगा, के नदी नाला कुआ बावड़ी उछली उछली गावेगा। के अमृत भरने लाया है वी, हो अमृत भरने लाया है वी कुआ आखा भरई गया हो कुआ बावड़ी भरई गया ये कारा बादरा आई गया हो कारा बादरा आई गया हो उमड़ घुमड़ ने बरस बरस ने कारा रे बादरा आई।

या हो करा बाजरा आया, या क्यारा बांधो मेला बांधो और नहरा बांधो भैया, क्यारा बांधो मेला बांधो नहरा बांधो भैया, के खेती में मोती उगेगा, हो खेती में मोती उगेगा, रंभावेगा गैया, हो रंभावेगा गैया, विकारा बाजरा आया, हो करा बाजरा आया, हो उमड़ घुमड़ ने बरस बरस ने करारे बाजरा आया, ये करा बाजरा आया। अंतिम पंक्ति में कह है कि कारी कोयल कूके है ने मोरिया नाचे गावे, हो कारी कोयल कूके है ने मोरिया नाचे गावे, के मैं हो बरसे रिम झिम रिम झिम, हो मैं हो बरसे रिम झिम रिम झिम, छोरा छोरी नहीं गया, हो नाना नानी नहीं गया, ई करार बाजरा आया, हो उमड़ घुमड़ ने बरस बरस ने ई करार बाजरा आया, ई करार बाजरा आया, ई करार बाजरा आया। अब मैं तुम्हारे सामने दूसरी कविता सुनाई रहा हूँ। कविता को शीर्षक है बादल असाढ़ को, के बादरो बरसेगा। मालवा में बादल असाढ़ का आता है और लटालूम छा जाती है, तो इस प्रकार आपने जो है आखा आसमान में पानी बरसवा को माहौल बन जावे है। तो यह कविता आप प्रस्तुत है, के बादरो बरसेगा, के टापरो टपकेगा, हो रामला दौड़ पेमला दौड़ के लूड़ा हारा रे, बादरो बरसेगा, हो टापरो टपकेगा, हो रामला दौड़ पेमला दौड़ के लूड़ा हारा रे, बादरो बरसेगा। अगली पंक्ति में क्यों है, वी बरखा का बदला दौड़ी आईरिया है, हो उमड़ घुमड़ ने साथ वायरो ले रहा है, हो भी बरखा का बदला दौड़ी आई रहा है, हो उमड़ घुमड़ ने साथ वायरो ले रहा है, टापरी ठोक चुहारा ने रोक, हो टापरी ठोक चुहारा ने रोक, कभी लो तारा रे केलुड़ा हारा रे, केलुड़ा हारा रे, हो बादरो बरसेगा, टापरो टपकेगा, हो रामला दौड़ पेमला दौड़ केलुड़ा हारा रे, केलुड़ा हारा रे। अगली पंक्ति में क्यों है, के खेता ऊपर टूटीगी है टापरी, हो खेता ऊपर टूटीगी है टापरी, मेणा की ये फूटेगी है पापड़ी, हो मेणा की या फूटेगी है पापड़ी, बांसड़ा ठोक के बांसड़ा ठोक केलूड़ा ने रोक, यो तनलो वारा रे केलूड़ा हारा रे, बादरो बरसेगा, टापरो टपकेगा, हो रामला दौड़ पेमला दौड़ केलूड़ा हारा रे, केलूड़ा हारा रे। अंतिम पंक्ति में क्यों है, कविता की अंतिम पंक्ति में आपने सुना ही रहे हूँ, के मेहनत माँ की पूजा कर ले रामला, हो मेहनत माँ की पूजा कर ले रामला, हो अणि धरती ने स्वर्ग बनाई दे पेमला, अणि धरती ने सरग वणई दे पेमला, कि हामदा जोत कि हामदा जोत इंदर जी ने नोत, यो तनड़ो वारा रे केलूड़ा हारा रे, के बादरो बरसेगा, के टापरो टपकेगा, हो

हरा रे। अब मैं तमाम सब भाई और बहना के सामने जन संवर्धन पर आधारित कविता सुनाई रहा हूँ। कविता को शीर्षक है आछो मान सरोवर। के अमृत पानी से भरो यो हुओ है, के अमृत पानी से भरो यो हुओ है आछो मान सरोवर। के सूरज की किरणाती लईने, सूरज की किरणा से सजीने लागे मने मंजू मनोहर, लागे मने मंजू मनोहर। के एक बूंद भी मेलो पानी, के एक बूंद भी मेलो पानी इमे कदी नी दिखे। के स्वच्छ कांच सो निर्मल पानी पीवारो मारो मन करे, पीवारो मारो मन करे। के अमृत पानी से भरो ही हुए है आछो मान सरोवर, ने सूरज की किरणाते सजीने लागे मंजू मनोहर। अगली पंक्ति में कहो है कि चंदा की चमचम किरणा से, कि चंदा की चमचम किरणा से चांदी सो लहरावे है, ने तारा ने गोदी ने लईने वो मंद मंद मुस्कावे है, वो मंद मंद मुस्कावे है, वो मंद मंद मुस्कावे है। अगली पंक्ति में क्यों है कि शेल हिमालय इको रक्षक, कि शेल हिमालय इको रक्षक भारत इनकी माता अपनी धुन में रोज अकेलो गुपचुप गुपचुप गाता, गुपचुप गुपचुप गाता। देखिए अंतिम पंक्ति में क्यों है कि मान सरोवर देखो जैसो, मान सरोवर देखो जैसो गांधी जी रो जीवन शांति सत्य सद्भाव अहिंसा मानवता रो दर्पण अमृत पानी से भरे हुए है आछो मान सरोवर। सूरज की किरणाती सजीने लागे मंजी मनोहर, लागे मंजी मनोहर। अब मैं आपके सामने एक साक्षरता पर आधारित कविता सुनाई रहा हूँ, तुम्हारे सामने लीजिए सुनो साक्षरता पर आधारित कविता। शीर्षक है कांकड़वारा बालिया। हो कांकड़वारा बालिया तू भण लीजे रे, तू भण लीजे रे। हो गाय चरावा वारा तू भण लीजे रे, तू भण लीजे रे। अक्षर ज्ञान ले लीजे ने गंगा स्नान कीजे, के अक्षर ज्ञान ले लीजे ने गंगा स्नान कीजे। के भणी लिखी ने अणि जगत में दुखड़ा दूर कीजे, के अक्कल की वाता ने भैया, हो अक्कल की वाता ने भैया। अक्षर वृक्ष से लीजे हो का

0: लिखी लीजे रे के छोटा मोटा नाना नानी भणवा था तो जाजो, के छोटा मोटा नाना नानी भणवा था तो जाजो, के गुरु जी से मिलने थे तो नाम लिखी ने जानो, के गुरु जी से मिलने थे तो नाम लिखनो जानो, के मलक किताबा आएगी री है, हो मलक किताबा आएगी ही है, अक्षर अक्षर गाजो, हो अक्षर अक्षर गाजो, के सरकारी की वाता ने थे सगरा मिलने मानो, हो काकड़वारा बालिया तू भण लीज रे तू लिखी लीज रे तू पढ़ लीज रे, हो काकड़वारा बालिया तू भण लीज रे तू लिखी लीज रे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो कवि साहब ने कितनी अच्छी बात की कि भण लीजिए, पर भणने से याद आया कि भणो भी ना गुणो भी, मालवा में बहुत अच्छी बात बोली जाई है। अब देखो भणा गुणिया का बात सुनने की बात आई है, तो मालवी कविता का बात करा अपने मालवी गीत की। तो मालवी गीत की बात निकले अने मन में अपना आप कोई धुन नहीं गूंजे, ऐसो तो मुश्किल ही है भैया। मालवा में गीत खाली गावा की चीज़ नहीं है, गीत तो जीवन जीवा को एक तरीको भी है। खुशी होए, शादी ब्याह होए, त्यौहार होए, खेत में कोई काम होए, सावन आए या कोई धार्मिक अवसर होए, हर मौका का साथ गीत हुन की अपनी परंपरा जुड़ी मिली जाए है। मालवी गीत हुन में सबसे खास बात है इनकी सहजता। इन गीत हुन के सुनवा में ऐसो लगे है जैसे कोई काम करता करता भी धीरे धीरे गुनगुन रहा हो, ना भारी शब्द ना कठिन भाषा, मन में जो भाव आई है वो के सीधो गीत में उतारी दे। इना कारण मालवी गीत घना लंबा टेम से लोक जीवन में अपनी जगह बनी रखी रहा है। अपना गांव में पहला गीत हुन को खाली मनोरंजन को काम नहीं, तो गीत हुन का जरिए रीति रिवाज, अनुभव अने लोक परंपरा हुन के भी आगे बढ़ाई जाए यो उद्देश्य भी थो। शादी में अलग गीत, जन्म हो तो अलग गीत, खेती बाड़ी का काम हो तो अलग गीत, त्यौहार का समय अलग गीत सुनवा में आई है। भाई बहन उन्होंने मिली बैठी है तो गीत शुरू हो जाए है, कोई एक लाइन उठाए अने बाकी सब उका साथ सुर मिलाई दे। इनमें ना कोई बड़ो मंच चाहिए, ना कोई माइक चाहिए, ना बड़ी कोई तैयारी चाहिए, मन में भाव होए अने आवाज में सुर होए, बस गीत तैयार। किसान की जिंदगी भी गीत हुन में उतरी है, कहीं फसल की खुशी है, कहीं भाई बारिश की आस है, कहीं मेहनत की बात है, तो कहीं घर परिवार की एक चिंता। मालवी लोकगीत हुन की परंपरा में महिला हुन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घर परिवार का कामकाज का बीच मन में बसिया घना भाव गीत बनी के बाहर आई जाए है। मायका, ससुराल, भाई बहन, त्यौहार, सावन अने रिश्तेदारी, इन सबका रंग गीत हुन में दिखाई दे है। कई बार गीत सुनता सुनता समझ में आई है कि साधारण सी लागवा वाली

एक लाइन में कितनी गहरी भावना छुपी हुई है। मालवी गीत उनकी दुनिया में हास्य भी अने ठेठ गांव को रंग भी है। कहीं ननन भाभी की नोकझोंक है, कहीं देवर भाभी का हंसी मजाक है, कहीं सास बहू की बात है, तो कहीं रोजमर्रा के जो जीवन है उनमें कोई मजेदार घटना है। पर इन सब का अंदाज ऐसो हुई है कि सुनो आड़ो मुस्कुराई दे है। लोग हंसी का ई रंग मालवी गीत हूं के और अपनों बनाई दे है। पर नई धुन अने नई तकनीक का बीच पुरानी मिठास बची रहे तो भी यो जरूरी है, क्योंकि मालवी गीत की पहचान खाली संगीत में नहीं है बल्कि उन बोली में है जिनमें मिट्टी रिश्ता मेहनत अने अपनोपन सांस ले है। यह आज मालवी गीत की असली ताकत है। सुनाई तो कान से दे है पर सीधो दिल पर असर करे है। तो इन्हीं बात का साथ अब जैसे बात निकली है गीत की, तो आओ सुना एक प्यारो सो गीत जिका बात अपने अपनी बात करांगा।

तो गीत के बाद एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। अब देखो, गीत की तो बात हुई गई, अब बात करें अपने जल झुलनी एकादशी की, जिसे कई जगह डोल ग्यारस का नाम से भी जाना चाहिए। यो पर्व भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी के आई है। मालवा में यो दन भक्ति उत्सव अने लोक परंपरा का रंग का साथे दिखाई दे है। लोक मान्यता है कि इंदन भगवान विष्णु अपना शयन में पलटी ले है, अने इना ही कारण इकी मान्यता और ज्यादा बढ़ी जाए है। डोल ग्यारस यानी जल झुलनी या परिवर्तनी एकादशी इके अलग अलग नाम से जाने जाइए। इन दिन भगवान विष्णु के डोल या पालकी में विराजमान करी के जल का किनारे ले जायो जाए है। कई जगह भगवान के प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करो जाए है, अन्य शोभा यात्रा निकाली जाए है। नदी तालाब या दूसरा जल स्त्रोत का पास पूजन अर्चन करी जाए है। भगवान के जल विहार से जुड़ी इन्हीं परंपरा के श्रद्धालु होने के लिए और खास महत्व रखे जाए है। डोल ग्यारस का दिन मंदिर हुन में सवेर से तैयारी शुरू हुई जाए। मंदिर की साफ सफाई, भगवान को श्रृंगार, फूल की सजावट, अन्य पूजा पाठ, हर काम में मन लगाई के लोग हुन जुटी जाए है। जदे भगवान को डोल निकले है तो रास्ता में श्रद्धालु हुन दर्शन के लिए इकट्ठा हुई जाए है। कहाँ की जगह भजन कीर्तन सुनवा में आए है तो कहाँ की जगह ढोल मंजीरा की आवाज़ को माहौल और उत्सव के और अच्छो बने दे है। स्थानीय परंपरा का अनुसार भगवान के जल विहार का इना पर्व को प्रकृति अने जल से भी जुड़ी के देखे जाइए। बरसात का टेम तालाब पोखर में पानी भरी जाए है, खेत हुन में हरियाली छई जाए, अन्य चारी तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली जाए है। ऐसा में डोल ग्यारस को माहौल मालवा का गांव घर के मतलब जो जीवन है उसके और ज़्यादा गहरो जुड़े थको देखे जाए है। इन पर्व की एक खास बात यह है कि हर गांव अन्य क्षेत्र में मनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कहीं डोल के खूब ज़्यादा सजाए जाइए, कहीं शोभा यात्रा निकाली जाइए, कहीं जल स्रोत का किनारे विशेष पूजा हुई है। स्थानीय परंपरा होने से देखा जाए तो अलग अलग रंग ही डोल ग्यारस को लोक पर्व के और अच्छी पहचान दे है। अब आज का टाइम तो बदली गयो है, शहरों में जीवन की रफ्तार बढ़ी गई है, अन्य नई पीढ़ी का पास अपना अपना काम है, पर डोल ग्यारस जैसी परंपरा हुन आज भी लोग हुन का साथे आने को एक अवसर दे है। बच्चा बच्ची जदे बुजुर्ग का साथे डोल देखे है, अन्य पर्व की कहानी सुने है, तो लोक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोक परंपरा का साथे लोकगीत भी पहुँचे है। अब लोकगीत तम बात करी रहा हो तो लोकगीत सुनो भी तो सही, तो आओ सुना एक लोकगीत जिका बाद अपने अपनी बात करा।

अब आओ गीत होने के बाद अपना जो कार्यक्रम में एक नज़र अपना मंडी भाव पे भी मारना कि कहीं भाव चली रहा है अपनी मंडी में आज। तो सबसे पहला शुरुआत कराना तुम्हारे मालूम ही जाएगी गांव से, तो गांव से शुरुआत करा लोकवान गांव का। तो गांव का भाव रहा 2071 से लगेगा 3150 तक। उसके बाद दूसरी फसल की बात करा तो चना में देसी चना को भाव रहा आज 5901 को। डालर चना को भाव रहा आज 3350 से लगेगा 7951 तक। सोयाबीन की बात करा तो भैया सोयाबीन को भाव रहा 2700 से लगेगा 6085 तक। अब दूसरी फसल आड़ी देखा तो भैया बटला को भाव रहा 3201 को, रायड़ा को रियो 6850 को, मूंग को रियो 7600 को, मेथी धाना को रियो 5240 को, तुअर को रियो 4300 को, तिल्ली को रियो 10491 को। अब देखो गीत का बाद तुमने मंडी भाव भी जान लिया। अब मंडी भाव का बाद अब मन तो करियो कि एक गीत और सुनना, पर टेम भी इतरोज हुई है कि गीत तो अपना सुन ही नहीं पाएगा। तो अब गीत का अगला कार्यक्रम में तुम्हारे सुने ही जाऊंगा। अब घड़ी ने इशारों तो करी दियो है कि टेम हुआ वालों है। तो आज अपन ने ढेर सारी बात करी है भैया। देखो अपन मालवी कविता से चालू हुआ, तो मालवी लोकगीत पे पूछी गए, अपना त्यौहार होने पे गया, डोल ग्यारस पे गया। तो हूँ आशा करूँगा कि तुम्हारे जो आज को कार्यक्रम है और इनमें जो मिली जानकारी है तुम्हारे पसंद आई होगी। अने फिर भी तुम हमारे कोई सुधार या अनुभव या सुझाव लिखे के पूछाना चाहो तो तुम हमारे पूछे सकता हो। अब हमारा पतो तो तुम्हारे मालूम ही होगा, अने नहीं भी मालूम हो तो हूँ तुम्हारे बताई दूँ। हमारा पतो है आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक विद्यापति नगर नानाखेड़ा उज्जैन। पिन कोड है हमारा 456010। अपनी बात तो खत्म नहीं होएगा पर टेम जरूर खत्म हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें मालूम है कि एक थोड़ा सा हूँ आज की कोई अच्छी बात भी हूँ तुम्हारे बताई दूँ कि आत्मविश्वास अपनी क्षमता के पहचाने है, घमंड जो है दूसरा के कम समझे है, और जो अति आत्मविश्वास है वो अपनी सीमा हूँ भूली जाए है। तो हर इंसान अलग है, इकालिए दूसरों जैसो नहीं, खुद से बेहतर बनो, दूसरा जैसो मत बनो और आत्मविश्वास रखो। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक हुई है, मालूम है नहीं, अति हर चीज़ की खतरनाक रहे है। अब घड़ी में बजवा वाला है 8, हूँ भी नापी लूँ मारी बाट। तो फिर मिला अगला कार्यक्रम में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वच्छता बनाई के रखो। अने तुम्हारा भाई कुलदीप शर्मा यानी मारे दो विदा, राम राम, जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। कुछ ही समय में हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
3: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रूपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रूपए का एलिजिबल अकाउंट में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रूपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा

0: ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खोलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है, हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: सुरक्षा
2: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं?
0: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए। जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
1: जी?
2: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है। ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा, तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिस पे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्कसंगत फैसले लेती हैं वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें, तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधा

0: से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए, पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत यह रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहां तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में हैं। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्ध शहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। अब फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियल्टी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया, और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गाँव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
3: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खास तौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान लें 5,000 की हुई है, 5,000 की उनको 10,000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा

0: बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी फुल डिसेबिलिटी तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है। 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं, और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
0: लिमिटेड।
2: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
1: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
0: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है, और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है। और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आई नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा, और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें, यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है, या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए, आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा, उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112 या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन करें
2: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। तो श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं नए दौर के कुछ सुपरहिट गीत जो युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। शुरुआत करते हैं एक प्यारे और रोमांटिक गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत झलकती है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में प्यार की इस मधुर शुरुआत ने दिल को छू लिया। जहाँ एक ओर सादगी भरा प्यार होता है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में थोड़ा जोश और जुनून भी ज़रूरी होता है। इसी जोश और एनर्जी को लेकर आता है हमारा अगला गीत।

मीत ब्रदर की आवाज़ में ऊर्जा और रोमांच से भरा इस गीत ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। तो श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं तक। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही समय में अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।

प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता

0: सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वही तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वही निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और

0: सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं, और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब

0: फिक्शन फिल्म कल्की 2898 ईडी वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट. राजकुमार पेरियासामी रिसीव द बेस्ट डायरेक्शन ट्रॉफी फॉर द तमिल मूवी अमरन. द तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू टुक होम द बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म ऑनर. इन द एक्टिंग कैटेगरीज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड वॉज जॉइंटली प्रेजेंटेड टू वेटरन एक्टर ममूटी फॉर भ्रमयुगम एंड कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन. यामी गौतम वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन आर्टिकल 370. अपर्णा खून, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद.
1: स्पीकिंग एट द सेरेमनी, लेजेंडरी एक्टर आनंद नाग थैंक्ड एवरीवन हु सपोर्टेड हिम थ्रू आउट हिज एक्टिंग जर्नी.
2: I am very lucky to got this highest award in films, Dada Saheb Phalke Award, at the hands of Srimati Murmu ji. And I am very grateful to all the people who have been with me throughout these 50-55 years of being an actor. This award does not belong to me alone. It also belongs to every producer, director, dialogue writer, songwriters who have worked with me tirelessly. The award belongs to millions of people who have opened their hearts and minds to my characters over the last 5.5 decades.
1: This is Akashvani giving you the news.
3: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
1: India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
4: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for the sovereignty, for their territorial integrity.
1: Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade poses a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, heads of states and union territories, in New Delhi today, Mr. Shah said, government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Mr. Shah called for a shift from meetings to missions, reporting to results, seizures to dismantling drug networks, and cases to convictions. 21 states and union territories signed memorandums of understanding MOU with the Civil Aviation Ministry for the next phase of the Uran Ure Desh Ka Aam Nagrik scheme in New Delhi today. Through the deals, the center aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Speaking on the occasion, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu described Uran as one of the most revolutionary schemes in the country, propelling regional air connectivity across the nation.
5: As we have done MOUs with the state for implementation of the next phase of Uran, we have extended it for 10 more years, taking some observations from the earlier Uran. One of the most important objectives for us through this MOUs is to go on a challenge mode for the construction of airports. Rather than taking all the airports at top once, we have created a system where the most important ones, the priority ones, they get to be done first. We also have to create helipads across the country, and this is a great advantage for northeastern states, island states. We have a target of 200 which we want to spread across the country so that the helicopter operations also can move forward.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the government e-marketplace GEM.
6: The government e-marketplace GEM, launched in August 2016, has emerged as a major digital platform for public procurement in the country. The platform brings together buyers and sellers on a common online marketplace, addressing a post-budget webinar on ease of living using technology in 2023. Prime Minister Narendra Modi highlighted how the GeM portal has empowered small business owners and street vendors to participate in government procurement.
7: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल GeM दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं।
6: Talking to Akashvani News, Chief Executive Officer of GeM, Mihir Kumar said that the business of GeM has grown from 422 crore rupees in 2016-17 to over 20 lakh crore rupees now.
8: We started the government e-marketplace in the year 2016, and in the first year we did a business of 422 crore. On cumulative basis, we have crossed 20 lakh crore of business. So in 10 years time, we have not only done a business of 20 lakh crore, we have also onboarded 25 lakh sellers on our portal. At the same time, micro and small enterprises, they have been contributing 45% of the GMV of the portal.
6: The sellers on GeM platform have grown from around 3,000 to over 25 lakh. With its growing participation from micro and small enterprises, women entrepreneurs, startups and other sellers, GeM is continuing to expand the reach of digital public procurement across the country. With Dipendra Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: You are listening to the news at 9 on Akashwani.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts.
9: News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
10: A depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh, South Odisha coast and is likely to intensify into a deep depression. Due to the weather system, Odisha is witnessing heavy rain, with extremely heavy rainfall expected in isolated areas. We have more from a correspondent.
11: The state government has deployed 33 ODRAF teams, kept cyclone and flood shelters ready and directed authorities to monitor vulnerable areas. Schools have been closed in Khordha, Puri, Jagat Singhpur, Ganjam and Gajapati, while Malkangiri schools will remain closed till Thursday. Ferry services between Satapada and Jahani Kuda in Chilika have also been suspended till Friday as a precaution. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
10: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said that the national capital will witness mostly clear skies with no rain. On to sports now. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue reasserting its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Games, thrashed Sri Lanka by 147 runs in the final at Nisin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Ushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-finals tomorrow. In Ushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60-kilogram event. She secured a 5-0 win over Chu Mansin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs aside one-off T20 international match at Sano today. Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for the year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saab Phalke Award. Yami Gautam, Karthik Aryan and Mammootty receive Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes in Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Udaan scheme. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. And at Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medals tally to 7. And that is all in the news at 9. Good night.
12: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं माजिद अली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ रखा है। आइंदा 2 रोज के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है, जिसके बाद तमगों की कुल तादाद 7 हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया है कि सिनेमा भारत की वसी सकाफती गुनागुनियत की अक्कासी करता है और ये मुख्तलिफ जबानों, इलाकाई नुक्ते नजर और जाम कौमी उमंगों को मरबूत करने के एक पुल के तौर पर काम करता है। गुजरात के एकता नगर में तारीखी 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों और फिल्म साजों को भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली तख्लीकी तआवुन के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क के मुश्तरक ख्वाबों और समाजी सफर के इजहार में एक कलीदी रोल अदा करता है।
13: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
12: तख्लीकी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ्फुज़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
14: गुजरात के एकता नगर में मुजस्मा इत्तेहाद के अजीम शान पस मंजर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर के कुल 92 अवार्ड याफ्तगान को एजाजात से नवाजा। सरकर्दा अदाकार अनंतनाग को 5 दहाइयों पर मबनी भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली फिल्मी सफर के लिए 2024 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल मिला। सरकर्दा अदाकार ममूती को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गैर फीचर फिल्म जुमरे में मराठी फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
12: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोजा तकरीब में आबो हवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नेदरलैंड और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकत दार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैन अल-अक़वामी इश्तराक को फ़रोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मुअसर बंदोबस्त की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोबा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निपट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार पर जोर दिया।
15: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. This Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
12: Nayab Sadr-e Jamhooriya ne mazid is baat par zor diya ke is mamle mein kaseer fariqi aur kaseer rukhi tareeqekar ki zarurat hai taaki takniki ikhtira, maqul policy, science malumat, maqami tajrubat aur community ki shamooliyat ko yaqeeni banaya ja sake. जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली के सबब बारिश की सूरत हाल ज़्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज़्यादा बारिश और ज़्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश ना होने से निपटने के लिए तरीक़ेकार की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को ज़खीरा करना और मौसर आबपाशी की पानी की बचत के जामे तरीक़ेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को महफूज और माकूल पीने का पार साफ पानी फराहम करने के लिए अहदबस्ता है। उन्होंने कहा कि पानी एक मुश्तरका वसीला है, लिहाजा सबके लिए पानी की यकीनी फराहमी भी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में भारत में नेदरलैंड की सफीर मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि पानी की बचत भारत नेदरलैंड कलीदी शराकतदारी का एक अहम सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमनो इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का इरादा किया है। तर्जुमान ने फजाई हमलों में जान गंवाने वाले शहरियों के तई ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर कि पाकिस्तानी मुसल्लह फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुसलसल अहदबस्ता हैं, जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में कार्रवाई और पुख्ता आज़म का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को इससे पहले कि दुनिया उनके कहे पर यकीन करे सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मुअसर कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात की तजारत के खिलाफ ये कहते हुए सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है कि मुनशियात मुल्क और दुनिया के लिए एक संगीन खतरा हैं। आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की मुनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स की 3री कौमी कॉन्फ्रेंस का अफ्तः करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के तहफ्फुज़ और भारत को मनुष्यात से मुबर्रा करने के लिए 2029 के लिए एक नक्श राह तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने के लिए मनुष्यात से मुबर्रा भारत का हदफ इंतहाई अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 वर्ष मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाए जाने के जरिए लोगों की जिंदगियों में अक्सर तब्दीली लाई जा रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के जरिए किस तरह इस नजरिए को हकीकत में तब्दील किया गया।
16: अगस्त 2016 में शुरू किया गया हुकूमत का ई मार्केट प्लेस GEM मुल्क में सरकारी खरीद के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ये प्लेटफॉर्म बेचने वालों और खरीदने वालों को एक मुश्तरक ऑनलाइन प्लेस तक लेकर आता है। 2023 में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने पर बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि GEM पोर्टल ने किस तरह छोटी सनत के मालिकान और रेड़ी पटरी लगाने वालों को हुकूमत की खरीदारी के अमल में शामिल होने के लिए बाइख्तियार बनाया है। छोटी बहुत छोटी सनतों, खवातीन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और दीगर फरोख करने वाले अफराद की शमूलियत से GEM मुल्क में डिजिटल सरकारी खरीदारी की पहुंच में मुसलसल इजाफा कर रहा है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
12: 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अगले मरहले के तहत एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तोसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपैड्स तामीर करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थीं, जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई हैं और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज़्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदेह फजाई सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस तकरीब में एरोडोम डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया और उड़ान रूट की बोली के अगले मरहले के लिए स्कीम दस्तावेज जारी किए गए। गेंडे के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक सींग वाले गेंडे नहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ्फुज में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिले सताइश हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने कहा है कि कौमी राजधानी खत्ते के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर ख्वातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनुष्यात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मनुष्यात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
17: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां में रुजदा अपने तमाम सामईन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती है। सामईन, आज का कहकशां प्रोग्राम महफिल समा पर मबनी है और आज की महफिल का मौजू है दरवेशों की दुनिया, फकीरी, फना और इश्क। सूफियाना रिवायत में दरवेश वो है जिसका दिल मोहब्बत, आजिजी और इंसान दोस्ती से लबरेज हो। फकीरी इंसान को दुनिया की जाहिरी चमक दमक से बेनियाज रहना सिखाती है। फना अपनी अना को मिटाकर महबूब हकीकी में गुम हो जाने का नाम है और इश्क वो रोशनी है जो इंसान को अपने रब और उसकी मखलूक से जोड़ देती है। महफिल समा सिर्फ मौसिकी या कव्वाली का नाम नहीं बल्कि रूह की एक कैफियत है जहाँ लफ्ज़, सुर और एहसास मिलकर दिल के बंद दरीचे खोल देते हैं। आज की महफिल में हम तीन ऐसी कव्वालियों के ज़रिए इस रूहानी सफ़र पर चलेंगे जिनमें इश्क और दरवेशी के मुख्तलिफ रंग जलवागर हैं। आगाज़ करते हैं मारूफ सूफ़ी गुलुकार आबिदा परवीन की आवाज़ से, जिनकी कव्वाली आसां इश्क नमाज इश्क हकीकी को इबादत का दर्जा देती है। तो समात फरमाइए आबिदा परवीन की आवाज़ में कव्वाली।

बुल्ले शाह के मुर्शिद इनायत शाह थे, वो उच्च शहर के रहने वाले थे और बुल्ले शाह कसूर शहर के रहने वाले थे। इन दोनों शहरों को किस तरह बयान किया है बुल्ले शाह ने।

आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे। सामईन, सूफिया इकराम कहते हैं कि जब इश्क दिल में उतर जाए तो जिंदगी की हर सांस इबादत बन जाती है। यही इश्क इंसान को अपने अंदर झांकने और अपने खालिक से करीब होने का रास्ता दिखाता है। तो सामईन, अब बढ़ते हैं मोहब्बत और फिराक की एक और कैफियत की तरफ। ये कव्वाली दिल की तड़प, इंतज़ार और महबूब की जस्तजू को बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। पेश खिदमत है अजीम कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में कव्वाली।

की कव्वाली का, जिसमें दरवेशी, फकीरी और मस्ती का रंग नुमाया है। हजरत अली की मोहब्बत और सूफियाना वारफ्तगी से सरशार ये कव्वाली हर महफिल समा को एक नई रूहानी कैफियत अता करती है। तो आइए सुनते हैं अली दा मलंग नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में।

सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत फ़तेह अली ख़ां की आवाज़ में कव्वाली। सामीन, आज की महफिल समा में हमने फ़कीरी, फ़ना और इश्क़ के उन रूहानी रंगों को महसूस करने की कोशिश की जो सूफ़ी रिवायत की असल पहचान है। उम्मीद है ये महफिल आपके दिल में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम छोड़ गई होगी। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ रुश्ता को इजाज़त दीजिए। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी,
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा, आज नहीं, दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
2: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला, यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादुमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
2: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपॉन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
3: इन बैडमिंटन, द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, there North Korea came in their way.
3: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang. And finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
3: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कंप्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, थेरेबाय कंप्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।

0: इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
1: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
1: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड 4th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points, while Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
0: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमायर का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के DNS रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए चांदनी फिल्म से ये गीत श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज़ है। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरि का है।

Ha!

अब सुनिए सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को फिल्म तुम बिन से। फैज अनवर के लिखे बोलों को सजाया है संगीत से निखिल विनय ने।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि